एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026, समय 5:58 38 सेकंड। आरंभ आज की सभा का मंगल ध्वनि के साथ।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुने हिंदी में समाचार और उसके बाद विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम वंदन वार। इंतजार बस कुछ क्षण का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस चार विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर जिद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती।
5: वंदे मातरम।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, विचार बदलेंगे तो जीवन भी बदलेगा, शुरुआत हमेशा मन से होती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। कुछ ही पलों में 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 191। पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार है गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का भाग 6, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है रही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक पंकज उधास पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 पिटारा में सुनिए बॉम्बे टॉकीज गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रेकर की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन है रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11 विविधा में सुनिए मजरू सुल्तानपुरी पर आधारित चित्र भारती, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 12:05 सजेगी यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे हम सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सुनिए मन चाहेगी। 3:30 पर नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक शकुंतला, इस नाटक का दूसरा भाग। मूल लेखन है कालिदास का, रूपांतरण और प्रस्तुति राजेश रेड्डी की। 4 पिटारा में आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के, निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम पर निर्धारित, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज में क्लेनरेट मास्टर इब्राहिम से बातचीत। 7:00 में सुनिए हास्य नाटिका क्रोध हास्य और शलाका, माफ कीजिएगा क्रोध हरण और शलाका। लेखन है चिरंजीत का, निर्देशक दीनानाथ। 8:15 पर आप सुनेंगे रात्रि चित्रलोक। 9 आपके लिए। 10 छाया गीत और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात।

दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्रीराम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना दिन व्यर्थ है, उसी प्रकार श्रीराम के बिना उनके लिए राजसिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्रीराम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। कुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम वंदन वार। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में सुने आप संस्कृत में समाचार और 7 बजे सुने राष्ट्रीय हिंदी समाचार। 7:05 का समय रहेगा अंग्रेजी समाचारों का।

7:10 पर सुने हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा 7:40 पर।

कार्यक्रम आज के फनकार का समय रहेगा 9:30 पर और 10 बजे सुनिए महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी मंच।

शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम घर आंगन, शांति और सुकून की तलाश करें। कार्यक्रम पेश करेंगी मधु शर्मा।

ईमेल पर आधारित कार्यक्रम का समय रहेगा रात 10 बजे। और रात 11 बजे सुने राष्ट्रीय हिंदी समाचार। अभी आप सुन रहे थे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में सुनते हैं संस्कृत में समाचार।

0: समवहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विक विकासलाभः प्रबाधितः भविष्यति, जनसंख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैण्ड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिश्रृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैण्ड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीय चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्तुविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ति क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां, अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के

0: दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेटो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ।
1: हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम सुननी है सारे बन भाइया ने। आजाद भाई की राम राम। आज 17 मई आकाशवाणी की गौरवशाली 90 साल का सफर

आशवाना रहा। देश भर के 470 आकाशवाणी केंद्र पूरे देश में कंटीली बर्फीली वादियों चोटियों अक्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा सूचना और मनोरंजन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज आकाशवाणी सार परिसर में आकाशवाणी मैराथन 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें हिसार शहर की नामी गिरामी हस्तियों के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री रणबीर सिंह गंगवा लोक निर्माण मंत्री हरियाणा सरकार ने झंडी दिखाकर मैराथन यात्रा की शुरुआत की। लाइव मैराथन आप सुन पा रहे हैं फिलहाल सेक्टर 15 से कैमरी रोड होते हुए, फिर आज़ाद नगर पटवार भवन बीएड कॉलेज होते हुए फिर आकाशवाणी पर समापन होगी। समापन अवसर पर ठीक 7:30 बजे डॉक्टर नरसिंह राम बिश्नोई कुलपति गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सार मुख्य अतिथि हैं। आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी के साथ आप बने रहिए FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पे। न्यूज ऑन AIR ऐप पे भी आकाशवाणी के प्रसारण आप सुन पा रहे हैं। इसके अलावा गूगल पे जाइए, 102.3 FM इशार लाइव लिखिए, लाइव स्ट्रीम में आप आकाशवाणी इशार के प्रसारण साफ सुरीली और स्पष्ट आवाज में सुन सके हैं। आप मैराथन का लाइव जीवंत प्रसारण सुन पा रहे हैं। केंद्र निदेशक श्री पवन कुमार जी, ADP श्री दीपक हुडा जी, यांत्रिकी हेड सुनीता जी के नेतृत्व में मैराथन यात्रा जारी है। बहुत सी नामी गिरामी हस्तियां, मेरा प्यारा हिसार है, डॉक्टर संदीप फिजियोथेरेपी है सूर्योदय हॉस्पिटल, और शहर की विभिन्न टीमें जो हैं मैराथन यात्रा में भाग ले रही है। जगह जगह पर स्वयं सेवकों द्वारा इसका रास्ता दिखाया जा रहा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आकाशवाणी की पहुंच जन जन तक, आकाशवाणी राष्ट्रवाणी बने रहिए FM आकाशवाणी के साथ। मैराथन यात्रा जो है अब 15 सेक्टर से कैमरी रोड जाते हुए।

0: आकाशवाणी सार पर फोन लाइन से सीधे जुड़े हैं जाने माने फिल्म अभिनेता श्री यशपाल शर्मा जी, जिन्होंने फिल्मों में अपनी धाक जमाई है।
1: थैंक यू आजाद भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यशपाल शर्मा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जो फिल्म कैरियर की शुरुआत की, कैसे की, अपने बारे में बताइए थोड़ा।
1: नहीं देखिए आजाद भाई, बस इतना ही है कि हिसार में पैदा हुआ और हिसार में ही मैंने रामलीला से शुरुआत की, वहीं थिएटर किया कॉलेजों में भी और वैसे बाहर अभिषेक नाट्य मंच में भी। फिर वहाँ एनएसडी में ट्राई करता रहा, नहीं हुआ। तीन बार चंडीगढ़ में हो गया, इंडियन थिएटर में डिपार्टमेंट में एमए ड्रामा वहां से करने के बाद मेरा दिल्ली में भी हो गया, तो वहां 3 साल ट्रेनिंग की और चंडीगढ़ के बाद, और फिर 2 साल रिपेटरी किया और फिर मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे आ गया, अब बॉम्बे में ढंग के काम नहीं मिले, 3-4 साल को भटकता रहा और तड़पता रहा। फिर धीरे धीरे अब वो काम मैंने शुरू किए हैं जिसमें मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और पूरा कंसंट्रेशन इसी के ऊपर है। बेशक मैं पैसा घर चलाने के लिए या थोड़ा बहुत काम बाहर बॉम्बे में कर लेता हूं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है और सब कुछ करना है। पूरा जो निशाना है इस वक्त हरियाणवी सिनेमा को करके ऊपर है और उसमें पहली फिल्म में बना चुका हूँ पंडित लक्ष्मी चंद के ऊपर जो बनी है फिल्म। 2 पार्ट में फिल्म बनी है क्योंकि पंडित लक्ष्मी चंद के काम को 1 पार्ट में दिखाना मेरे बस का नहीं था, बहुत कम। मुझे लगता मैं बस रांद काट रहा हूँ, जैसे हरियाणा में बोलना है ना कि रांद काट दी भाई
0: जी,
1: तो वो मजा नहीं आता क्योंकि इतने सारे गाने हैं, इतना म्यूजिक अच्छा है, इतनी कुछ बातें हैं, इतना अध्यात्मवाद है, ब्रह्म ज्ञान है उनका, तो मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। तो मैंने उनका ब्रह्म ज्ञान से पहले का जो पीरियड है बचपने का और यंग एज का, वो मैंने पार्ट 1 में दिखाया है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं, हरियाणा के सारे लोग, और मैंने एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है इसके रिसर्च में, इसकी राइटिंग में, इसकी कास्टिंग में, इसकी लोकेशन हंटिंग में, इसके कैमरा वर्क में, इसकी एडिटिंग में, इसके आर्ट वर्क में, इसके मेकअप में, इसकी कॉस्ट्यूम में। मैंने सारे दिग्गज लोगों को लिया है जो पूरे इंडिया के माने जाने नेशनल अवार्ड विनर लोग हैं, और एक्टर और सिंगर जो है वो सारे हरियाणा के हैं, और हरियाणा के कम से कम भी 150, और इनमें से 150 में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो कि बॉम्बे के प्रोफेशनल लोगों से भी अच्छा काम किया है जिन्होंने। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि ये हरियाणा के इतिहास में ये अभी तक की बेस्ट फिल्म होगी, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। हरियाणा की जनता पे और हरियाणा के आसपास के लोगों जो जानते हैं इस कल्चर को, उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस फिल्म को सही प्रसाद देंगे और सही हॉल में देखने जाएंगे और सही मास पब्लिसिटी करेंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा काम तो वो ये काम जरूर करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है।
0: यशपाल शर्मा जी पंडित लक्ष्मीचंद संस्कृति के अग्रदूत थे, क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो ये सब्जेक्ट चुना है क्योंकि मैं पहली फिल्म कौन सी करूं, वरना मैं हीरो हीरोइन की लव स्टोरी लेके कॉलेज का ड्रामा कर देता और बड़ा आसान था, 6 महीने में फिल्म तैयार हो जाती मेरी, 3 महीने 4 महीने की मैं 1 महीना में 20 दिन में शूटिंग करके, 15 दिन में 20 दिन में शूटिंग करके 3-4 महीने में फिल्म रिलीज कर देता मैं, बड़ा आसान था और सस्ती थी 20-25 लाख में। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं इतना आसान पहला काम नहीं करूंगा, चैलेंज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ड्रीम भी मेरा ऐसा ही था कि मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो ताकि लोग आसान रास्ता ना अपनाए, आज इसको देख करके कम से कम नहीं तो हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं उनको इंस्पिरेशन मिले, और अगर मिलेगी तो, क्योंकि मेरा तो मैंने ये वजह नहीं है कि मैंने इसलिए किया, मैं अपना काम बस अपनी ईमानदारी से अपनी आंख बंद करके, जैसे द्रोणाचार्य ने बोला था अर्जुन को कि कहां क्या दिख रहा है पेड़ पर, तो उसने बोला था मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमारी हरियाणवी संस्कृति की धरोहर के रूप में अगर बोले तो पंडित लक्ष्मी चंद सबसे ऊपर एक नाम आता है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, ये मेरा दावा है, पूरा मेरी गारंटी है और मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि सारी दुनिया इस बारे में जानेगी।
0: यशपाल शर्मा जी, आकाशवाणी के माध्यम से बहुत लोग बाग आपकी बात को सुन रहे हैं, हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए?
1: संस्कृति क्योंकि बोलते तो बहुत लोग हैं लेकिन करते नहीं है, हमको ना जीना चाहिए उसमें। क्या है कि दामन पहन के या पगड़ी पहन के या हुक्का लेकर के या धोती पहन के संस्कृति नहीं बचती, संस्कृति आपकी आत्मा में होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो हमको उन चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सब चीजों की, बड़े बुजुर्गों के कामों की, उनकी बातों की, उन पुराने जो उसूल हैं, जो उनके पुराने रीति रिवाज है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए और बिल्कुल भी उनको हिकारत या नफरत की नजर से या गिरी हुई नजर से कभी नहीं देखना चाहिए, ये महापाप होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम कूट मंडूक बन के ना रहें, हम एक जगह पे बस सीमित ना रह जाएं, हम पूरी दुनिया में जाने जाएं। इसलिए मेरा ये इस प्रोजेक्ट का भी यही मकसद है कि हरियाणवी सिनेमा का डंका दूर दूर तक बजे, तो वैसे ही हरियाणवी संस्कृति का भी बजेगा। मैंने कोशिश की है कि पुरानी चीजों को, एक 100 साल पुरानी जिंदगी को पटल पर उतारा जाए, और मैं कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस हुआ हूँ, क्योंकि जिसने भी देखी है फिल्म, रशीद देखे हैं, उन्होंने यही कहा है कि ये फिल्म हमें 100-150 साल पीछे ले जाती है और वही पीरियड है, तो उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा।
0: यशपाल जी, आप बॉम्बे से बोल रहे हैं फिलहाल?
1: हाँ, मैं बॉम्बे में हूँ अपने घर पे।
0: इतने बढ़िया ज्ञान लाभ की जानकारी के लिए श्री यशपाल शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया आजाद भाई, थैंक यू सो मच।

आकाशवाणी की 90 गौरवशाली वर्ष की उपलक्ष्य में आकाशवाणी हिसार द्वारा आज 2026 आकाशवाणी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। लाइव प्रसारण आप सुन रहे हैं। मैराथन का हमारी टीम आजाद नगर में पहुंच चुकी है। केंद्र निदेशक पवन कुमार जी और सुनीता जी के नेतृत्व में, श्री दीपक हुड्डा जी साथ में हैं।

0: पूरा आकाशवाणी स्टाफ, शहर की नामी गिरामी हस्तियां भी इस मैराथन में बड़े उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। फिट इंडिया हिट इंडिया आकाशवाणी एसआर का सतत प्रयास, शिक्षा सूचना और मनोरंजन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज की इस मैराथन में पुरस्कार वितरण समारोह के लिए पहुंचे हैं प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, कुलपति गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार। जी बिश्नोई जी,
1: आकाशवाणी के जो 90 साल की यात्रा कंप्लीट करने के लिए जो है, पहला सबसे पहला तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इतनी सक्सेसफुल यात्रा की, और आकाशवाणी जो 90 साल के अंदर जितना जो है दूरदराज के इलाकों के लिए और फ्रीडम के अंदर जितना भाग आकाशवाणी का रोल रहा, आज भी जो है दूरदराज के इलाके ढाणियों में और में स्वास्थ्य एजुकेशन एग्रीकल्चर और जो भी नई नई चीजें हैं उनके बारे में आकाशवाणी के ही समाचार सुन के उनको नई नई चीजों का पता चलता है। और 90 साल की यात्रा कंप्लीट करने पे इस टाइप की जो एक मैराथन जो आज जो सुबह की, जिसके अंदर बहुत सी उत्साहपूर्वक छोटे छोटे बच्चे और स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और बड़े उम्र के सभी टाइप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत ही भारी संख्या में जिस टाइप का उत्साह रखा, बड़ा सराहनीय कदम है। और इससे लोगों को जो है जागरूक सेहत के प्रति अपना स्वस्थ रहे, और ताकि फिट इंडिया के तहत जो है बच्चों को जागरूकता मिलती है, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए आकाशवाणी जो इशार है बधाई के पात्र है। इस टाइप की एक्टिविटी जो करी और आगे इस टाइप की एक्टिविटी जो है होती रहनी चाहिए लोगों को जो स्वास्थ्य के लिए, इस टाइप की मैराथन से जो है लोगों को बहुत ही लाभ होगा, और आकाशवाणी के बारे में भी लोगों को पता चलेगा भाई क्या क्या चीजें नहीं हो रही है हर एक सब्जेक्ट के अंदर।
0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के संदर्भ में आयोजित मैराथन पहुंच चुकी है सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। बड़े धावक बड़ी अच्छी स्पीड के साथ एक इस संदेश के साथ, हम सब एक हैं, स्वस्थ रहें स्वच्छ रहें, शिक्षा सूचना और मनोरंजन का संदेश आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष। आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर एक सतत प्रयास के तहत देश के युवाओं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सतत प्रयासों से आज पहली बार इस मैराथन का आयोजन आकाशवाणी प्रांगण से शुरू किया गया, जिसमें शुरुआत में श्री रणबीर सिंह गंगवा कैबिनेट मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, हरियाणा सरकार के कर कमलों से हरी झंडी दिखाई, साथ में डॉक्टर पवन कुमार जी केंद्र निदेशक, हमारे इंजीनियरिंग हेड सुनीता, श्रीमती सुनीता जी, श्री दीपक हुड्डा जी के साथ पूरा आकाशवाणी परिवार उत्साह और जोश के साथ सुबह 5 बजे से अभ्यासरत रहा, और एक बहुत सफल आयोजन की भागीदारी में अभी चंद लम्हों में, जैसे ही आप गीत संगीत सुन रहे होंगे, हमारी टीम जो है पहुंचने ही वाली है आकाशवाणी परिसर में। आप लीजिए एफएम 102.3 पर संगीत का मजा, और आकाशवाणी परिसर में होने जा रहा है पुरस्कार वितरण समारोह मैराथन 2026। आकाशवाणी मुख्य अतिथि प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, कुलपति गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एसआर। आप सुन रहे हैं फिल्म दादा लक्ष्मीचंद के वो मशहूर गाने, जो हरियाणवी फिल्म नई आई है। आइए सुनते हैं दादा लक्ष्मी फिल्म के ये गीत, और हम ये चलते हैं आपको आकाशवाणी परिसर में मैराथन 2026 के पुरस्कार वितरण समारोह में।

ना तो कोई इस दुनिया ते कति गया से और ना कोई सदा रहा से, सारा पंच तत्व का खेल से कोई भी चीज पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदल जा से। यहां तक कि मेरे ये शब्द जो मैं अभी बोल रहा हूं वो भी

खसम बस कर, हाथ में आ गया तो बजाना है, जरूरी नहीं है कब कहां इतना बजाना है। खोपड़ी में उसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी, संगीत में और शोर में फर्क हो। तानसेन तो बतेरे बनोता हूं, कभी कभी कानसेन भी बन जाएगा। अब सुन क्या होता है,

ये सुना भाइयों, आज आपने हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम के तहत हरियाणवी गीत संगीत, इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बहन भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। इंतजार बस कुछ क्षण का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मीना ठकराल। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की आज के पंचांग से। दिन है आज 17 मई 2026, वार है रविवार। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य उपासना, आदित्य, हृदय स्रोत का पाठ तथा जल अर्पण विशेष फलदायी माना जाता है। सूर्य को ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक माना जाता है। शक संवत 1948 के बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। सूर्योदय का समय 5:34 पर और सूर्यास्त का समय 7:12 पर। चंद्रोदय रहेगा 6:14 पर और चंद्रास्त 8:41 पर। सबसे पहले करते हैं हम अपने ईश्वर की वंदना।

वो आयु है कि चलना सीख रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है।

किसी वस्तु से करना चाहते हैं। अन्य कोई कवि होता तो कह देता, भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है, किसी भी तेज वस्तु या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही

और अब जानते हैं आज का मौसम। हिसार में आज भी भीषण गर्मी का प्रभाव जारी रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लू की स्थिति बनने के कारण मौसम विभाग ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अत्यधिक धूप में लंबे समय तक रहने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें, बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्म हवाओं का प्रभाव उन पर अधिक पड़ सकता है। सुबह के वातावरण में अपेक्षाकृत शांत और हल्का गर्म रहेगा, जबकि शाम के समय तापमान में हल्की गिरावट महसूस की

जा सकती है। हालांकि दिन भर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा और वर्षा की बहुत कम संभावना है। और आज लेते हैं हम आज का सुविचार। मनुष्य में जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता बल्कि उसके विचारों, व्यवहारों और संस्कारों में होती है।

हो जाता है। हर सुबह हमें यह अवसर देती है कि हम बीते हुए कल को गलतियों से सीखकर एक नई उत्साह और एक सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें।

समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद नया सवेरा आता है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद सफलता भी अवश्य आती है। इसीलिए अपने जीवन में सदैव अच्छे विचार रखिए, दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा बनाए रखिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराइए।

अब लेते हैं श्रीमद्भव भागवत गीता का एक श्लोक। ना ही ज्ञान ने सदृशय पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योगा संदिग्ध कालेना तमानी विदंती। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। जो मनुष्य साधना धैर्य और कर्म के मार्ग पर चलता है वह समय के साथ इस ज्ञान को स्वयं प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि संसार में धन शक्ति और प्रसिद्धि से भी अधिक मूल्यवान यदि कुछ है तो वह है सच्चा ज्ञान। ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होता बल्कि सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता भी वास्तविक ज्ञान है। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके भीतर से अज्ञान भय और भ्रम दूर होने लगते हैं। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और जीवन को देखने का तरीका भी शांत और सकारात्मक हो जाता है। गीता यह भी लिखती है कि ज्ञान एक दिन में प्राप्त नहीं होता, इसके लिए धैर्य अनुशासन अभ्यास और निरंतर प्रयास आवश्यक होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म और साधना में निरंतर लगा रहता है समय के साथ वह स्वयं जीवन के गहरे सत्य को समझने लगता है।

और अब लेते हैं एक और दूसरा श्लोक। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानी गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानिनी संयाति नवानी देही। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं।

हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा सदैव अमर रहती है। यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु का गहरा सत्य समझाता है और सिखाता है कि मनुष्य को सत्य और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन संदेश, आत्मा अमर है, इसलिए जीवन में सदैव अच्छे कर्म और अच्छे विचार अपनाइए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ही सार केंद्र है। कुछ ही देर में प्रस्तुत है समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो

0: मासिक अटल पेंशन सहित तीन गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 एटीपी चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश

0: हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस, इंडिया एंड द नेदरलैंड्स एलिवेट देयर टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज डच काउंटरपार्ट रॉब येटन। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रीच गोथेनबर्ग टुडे ऑन अ 2-डे विजिट टू स्वीडन to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
4: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
2: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the Prime Minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement, FTA, took effect in January 2026. The visit follows a high-growth trajectory in economic engagement, with bilateral trade reaching a record $7.75 billion in 2025 and Swedish FDI into India totaling $2.8 billion between 2000 and 2025. More from our correspondent.
5: Sweden, one of the world's most innovative economies, finds a natural synergy with India's digital talent pool. Currently, over 280 Swedish companies operate in India, while 75 Indian firms have established themselves in Sweden. A unique highlight of the visit is the joint address by the Prime Minister to the European Roundtable for Industry alongside the European Commission President. Defense and security cooperations have evolved into a central pillar moving towards industrial integration. This relationship is anchored in a 2009 Defense Cooperative Agreement and 2019 General Security Agreement. Industrial trust is exemplified by Swedish major establishing a fully owned production facility in Haryana under Make in India. It may be noted that such investment drive local employment and capacity building. Collaboration in artificial intelligence and emerging technologies provide the bedrock of this partnership. Future cooperation prioritizes AI, digital and the Internet of Things. Furthermore, the two nations are collaborating on space exploration, with the Swedish Institute of Space Physics providing instruments for ISRO's Venus Orbiter mission. The green energy transition is central to the bilateral agenda. A standout success is the LEED IT initiative launched in 2019 to guide the heavy industries towards a low-carbon economy. It may be noted that at COP28, the two prime ministers launched LEED IT 2.0, emphasizing technology transfer and the industry transition platform to mobilize technical support. Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
2: India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence and the principle of ahimsa. This deep-rooted bond is marked by historic milestones such as the centenary of Nobel laureate Rabindranath Tagore's 1926 visit to Sweden. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In conversation with Akashwani, Indian Ambassador to Sweden Anurag Bhushan emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties.

आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। संडे की लेजी सुबह में घोलते हैं थोड़ी सी रिदम, थोड़ी सी मेलेडी। हम तुम और गोस्ट फिल्म के इस गाने के साथ के और श्रेया घोषाल की आवाज में।

आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा मैसेज अपने यारम के नाम। एक थी डायन फिल्म से सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरेओ की आवाजों में गुलजार के बोल विशाल भारद्वाज का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं शूल फिल्म से, शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति और बेबी अनघा की आवाजों में समीर के बोल, और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

गुस्सा वो बिन बुलाए मेहमान है जो कभी भी आ जाता है, और वजह बेवजह बस थोड़ी सी खटास छोड़ के चला जाता है। वैसे कभी कभी गुस्से की वजह हाई बीपी भी हो सकता है, और इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। साइलेंट किलर कहे जाने वाले हाई ब्लड प्रेशर को समय पर पहचानना बेहद जरूरी है। नियमित जांच, सही खान पान, कम स्ट्रेस और थोड़ी सी सेल्फ केयर, यही है बेहतर हेल्थ की शुरुआत।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से आप सुन रहे थे शंकर महादेवन, सूरज जगन और जूही बारुआ की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। अगला गाना कह रहा है आपसे खुद की धड़कने सुनने को, कभी अलविदा ना कहना फिल्म से ये गाना, शफाकत अमानत अली की आवाज में उनके साथ गाया है ये गाना शंकर महादेवन ने, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं लक बाय चांस फिल्म से। जावेद अख्तर के बोल, महालक्ष्मी अय्यर और अमित पॉल की आवाजें, म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कैदरी के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का, फिल्म है लूडो।

कार्यक्रम का अगला गाना जीरो फिल्म से। अभय जोधपुरकर की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने।

0: देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से पेपॉन की आवाज, बोल हैं गालिब के और म्यूजिक प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना द स्काई इज पिंक फिल्म से अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा की आवाजों में गुलजार के बोल प्रीतम का म्यूजिक।

अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज। आज के चित्रलोक कार्यक्रम को और इस रोमांचक सप्ताह को देते हैं एक हैप्पी एंडिंग। 30 मार्क हां फिल्म के इस गाने के साथ अभिजीत सावंत, हर्षित सक्सेना, प्राजक्ता शुक्री की आवाजों में, अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे, और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम हैं। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी मंच।

कार्यक्रम नारी मंच में स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। टेंशन, तनाव, चिंता बहनों एक ऐसी बीमारी जो इंसान को जीते जी अंदर से तोड़ देती है। बाहर से मानो सब ठीक दिखता है पर अंदर खुद से खुद रोज एक जंग चलती रहती है। हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपे होते हैं हजारों डर, अनगिनत सवाल, अधूरे जवाब, कभी आने वाले कल की चिंता तो कभी बीते हुए कल का बोझ। इंसान मानो आज में जीना ही भूल जाता है और तो और नींद आंखों से दूर हो जाती है, सुकून दिल से कहीं खो जाता है। कहने को तो आसपास के लोग यहाँ तक कि हमारे अपने भी कह ही देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, पर तनाव के कारण जो अंदर टूट रहा होता है वो हर किसी को दिखता नहीं। ये तनाव इंसान को धीरे धीरे इतना कमजोर कर देता है कि उसका शरीर भी उसके बस पे नहीं रह जाता और फिर शरीर देने लगता है कुछ ऐसे संकेत कि वो अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जब शरीर की सेहत खराब होती है तो अक्सर वो सबसे पहले परिलक्षित होती है रक्तचाप के असंतुलन के रूप में, यानी बीपी गड़बड़ होने लगता है। तो बहने बता दें कि 17 मई यानी आज मनाया जा रहा है विश्व रक्तचाप दिवस। और बात करें इस वर्ष की थीम की, यानी इस वर्ष 2026 का जो विषय आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है वो है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व उच्च रक्तचाप लीग WHL इस अभियान के संपूर्ण आह्वान को कुछ इस प्रकार बताते हैं। उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की यानी बीपी की जांच करवाएं और इस मूक हत्यारे को हरा दें। बहनों 2026 की ये थीम जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताती है, याद दिलाती है कि रक्तचाप को संतुलन करना, उसका प्रबंधन हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। ये केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसके लिए तमाम परिवारों को, रोगियों को, समाज और स्वास्थ्य पेशेवरों की बीच एक साझा जिम्मेदारी की भावना का महसूस होना जरूरी है। 1 अरब से अधिक लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और तब हैरानी की बात तो यह है कि अक्सर उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होती। और ये संदेश सभी से नियमित रूप से साझा करना है कि समय समय पर अपने रक्तचाप की जांच कराते रहें, क्योंकि उच्च रक्तचाप

जात को अक्सर साइलेंट किलर यानी मूक हत्यारा भी कहा जाता है। ये बिना किसी स्पष्ट लक्षण के वर्षों तक चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें लगता है कि हम सामान्य महसूस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में रक्त वाहिकाएं संकुचित हो रही होती हैं। दिल पर बोझ बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे तमाम अंग प्रभावित होते जाते हैं, और जब तक शरीर इन लक्षणों को दिखाना शुरू करता है तब तक गंभीर जटिलताएं आ चुकी होती हैं। इसीलिए इसे मौन हत्यारा भी कहा जाता है। याद रखें बहनों कि शुरुआती दौर में किसी भी तरह के कोई भी दर्द या स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते, नुकसान धीरे धीरे होने लगता है। उच्च रक्तचाप को महसूस करने का कोई तरीका नहीं है। बुखार या किसी दर्द की तरह हम इसे महसूस कर नाप नहीं सकते, इसलिए सिर्फ सावधानी जरूरी है। रक्तचाप को सावधानी पूर्वक समय समय पर जांच करवाना जरूरी है। रक्तचाप से जुड़ी ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा कर रही हैं डॉक्टर मधु सैनी। बता दें डॉक्टर मधु सैनी अनुभवी हैं अपने क्षेत्र की, एमडी मेडिसिन हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं और मधुमेह रोग को खासी महारत के साथ विशेषज्ञ के तौर पर ठीक करने के लिए जानी जाती हैं। तो आइए सुनते हैं विश्व रक्तचाप दिवस पर डॉक्टर मधु सैनी हमसे क्या कहना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले सुनेंगे कुछ संदेश।

0: फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट्स है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।
1: दादा कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: नमस्कार, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन कहा जाता है इसको। बहुत सारे पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद भी बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं, इसीलिए इसको एसिम्प्टोमेटिक डिजीज कहा जाता है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि अगर आपका बीपी हाई रहता है तो ये धीरे धीरे आपके हार्ट, ब्रेन, किडनी एवं ब्लड वेसल्स पे जानलेवा असर डालता है। तो आम जनता को हाई बीपी को लेकर जागरूकता बढ़े, इसी के लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। सभी लोगों को समय समय पर, खासकर जो हाई रिस्क कैटेगरी में

हैं, जैसे शुगर के पेशेंट्स, मोटापे के पेशेंट्स, जिनकी फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है, ऐसे लोगों को समय समय पर अपना बीपी जांच करवाते रहना चाहिए। हम बात करते हैं कि आज के समय में हाइपरटेंशन की समस्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। इसके बहुत से कारण हैं। नंबर वन, हमारी डाइट में नमक का बहुत ज़्यादा होना, हमारे सभी पैकेट बंद खाने, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इनमें नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जिसको हम हिडन सॉल्ट कहते हैं, छुपा हुआ नमक, जिसके बारे में हम बिल्कुल अवेयर भी नहीं होते हैं। नंबर टू, स्ट्रेस। नंबर थ्री, ओबेसिटी। नंबर फोर, फिजिकल इनएक्टिविटी। नंबर फाइव, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। नंबर सिक्स, पुअर स्लीप। तो ये सभी कारण हैं कि हमारा जो हाइपरटेंशन का जो रेट है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे महिलाओं से मेरा विशेष कर अनुरोध है कि वो अपनी सेहत के लिए जागरूक बने। महिलाओं में बीपी अंडर डायग्नोस्ड एंड अंडर ट्रीटेड होता है, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली को ही ध्यान में रखती हैं, अपने को प्रायोरिटाइज कभी भी नहीं करती हैं। महिलाओं को विशेषकर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज के बाद, जो महिलाएं ओबीज हैं, जिनको थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, और जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, ऐसे महिलाओं को विशेषकर अपने बीपी का चेकअप करवाते रहना चाहिए और उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन। कुछ गर्भवती महिलाओं को बीपी हो जाता है, जिसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन हाई बीपी माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। इससे आपके प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और जो बीपी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान पता चला है, वो बाद में भी कंटिन्यू रह सकता है। महिलाएं डिलीवरी के बाद बिल्कुल बेपरवाह हो जाती हैं और वो अपना बीपी चेक नहीं करवाती हैं, तो डिलीवरी के बाद भी उनका अपना बीपी रेगुलरली चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि वो आपके हार्ट, किडनी, ब्रेन पे बैड इफेक्ट ना डालें। दूसरा, मेनोपॉज के बाद बीपी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ हमारा जो हार्मोनल प्रोटेक्शन है वो कम हो जाता है। तो इसी दौरान महिलाओं को सेंट्रल ओबेसिटी, पेट के ऊपर चर्बी का ज़्यादा होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, स्लीप डिस्टरबेंस होना और इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, ये सब मेनोपॉज के बाद बढ़ जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को विशेषकर अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। ओसीपीस, कुछ महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खा रही होती हैं, तो ऐसी महिलाओं में बीपी का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसी महिलाओं को भी अपने बीपी का पता होना चाहिए, वो उनको उसका रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए। कुछ महिलाएं कुछ एटिपिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती हैं, जैसे उनको थकान रहना, सर दर्द रहना, सांस का फूलना, पैल्पिटेशन होना, स्वेलिंग होना, वो इस तरह से प्रेजेंट करती हैं, और लेकिन वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करती हैं। तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, अपने बीपी को चेक करवाते रहें। तो अब हम बात करते हैं कि बीपी को कैसे रोका जा सकता है या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे मेरा आप सभी को ये मैसेज है कि जिनको बीपी के लक्षण नहीं भी हैं, उनको भी अपनी डाइट में एक्सेसिव सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, हमारा जो सॉल्ट इनटेक है वो लेस देन 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1 टीस्पून, और वो आपका लेवल तक हो स्पून, ना कि ऊंचा उस पर ढेर लगा हो। इंक्लूडिंग हिडन सॉल्ट्स इन अवर फूड, कुछ लोग सिर्फ अपनी डाइट में 1 चम्मच नमक तो खा रहे होते हैं, लेकिन बाकी नमक जो बाकी सोर्सेज से आ रहा होता है उसके बारे में वो अवेयर नहीं होते हैं। नंबर टू, रेगुलर एक्सरसाइज। कुछ लोग घर के कामकाज को ही एक्सरसाइज का नाम देते हैं, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी है, हमें प्रॉपरली रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक हमें मेंटेन अपना जो हेल्दी बॉडी वेट है उसको मेंटेन करना है। हमें अगर शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। हमारी जो बैड हैबिट

हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल या अगर कोई हम नशा कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना है. स्लीप एंड स्ट्रेस, आज के टाइम में स्लीप एंड स्ट्रेस का बहुत बड़ा इशू है, तो हमें इसको इक्वली टेक केयर करना है कि हम इंश्योर करें कि हमारा जो स्लीप है वो साउंड स्लीप हो, एडिक्वेट हो. हम अपने स्ट्रेस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेप उठाएं. एंड सबसे एंड में, आप अपनी बीपी की गोली को कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के बंद ना करें. बहुत सारे पेशेंट्स मेरी ओपीडी में आते हैं और बोलते हैं कि मैडम हमें इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो हम बीपी की दवा नहीं खा रहे हैं और बीपी की दवा हमें नुकसान पहुंचा देगी. लेकिन ये एक मिथ है. अगर आप डॉक्टर की सलाह से बीपी की गोली खाते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा आपको ये बहुत सारी बीपी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाती है, जैसे हार्ट अटैक, अधरंग, किडनी पे इसका असर होना, आंखों पे इसका असर होना, इन सब चीजों से बीपी की दवा आपको बचाती है. आपको अपना बीपी, शुगर, वेट, बॉडी मास इंडेक्स एंड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिले और जाने कि आपका बीपी ठीक है कि नहीं, शुगर ठीक है कि नहीं, वेट ठीक है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा तो नहीं है. साइलेंट बीपी टूडे कैन बिकम स्ट्रॉन्ग टूमोरो. वुमेन्स हेल्थ डिजर्व्स इक्वल अटेंशन. तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर. थैंक यू वेरी मच.

मैंने खुशियाँ ही खुशियाँ हम सब चाहते हैं, तनाव अवसाद चिंता कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी उस तरीके से नहीं चल पाती जैसे हम उसको चलाना चाहते हैं। कारण यही है कि कहीं ना कहीं अनुशासन से हम लोग नाता तोड़ते जाते हैं और भूल जाते हैं कि आत्मनिखार क्या होता है। आत्मनिखार मतलब कि दुनिया मुझे बताए कि मुझ में क्या गलतियाँ हैं, क्यों ना मैं खुद इस बात का मूल्यांकन करूँ, अवलोकन करूँ कि मुझ में ये कमियाँ हैं और उन गलतियों को, उन कमियों को दूर करके खुद को निखार लूं। माना बहनों की अव्यवस्थित रहना सहना हमें आराम और सुकून देता है। आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, इसे सोचकर मोबाइल पर या जो भी तरीके ठीक लगते हैं उनके साथ आलस्य भरा जिंदगी बिताना पसंद आता हो शायद। लेकिन याद रखें कि अनुशासन का अभाव और आत्मनिखार का जज्बा ना होना हमारी जिंदगी को खासा नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी हम बिन वजह अपने जिंदगी की दिशा भी खो देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं, चाहे वो आपके अच्छे अंक हो, सफल भविष्य हो, खुशहाल परिवार हो, सम्मान से भरा जीवन हो, तो सबके लिए बहुत चीज जो जरूरी बन पड़ती है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है आत्मनिखार। आत्मनिखार आता है अनुशासन से और ये हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। अनुशासन सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं होता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे-छोटे फैसलों को सही तरीके से लेने में भी छुपा होता है। और अगर ये हमारी जिंदगी से गायब हो जाए ना, यानी आत्मनिखार, तो जिंदगी ऐसा लगता है बिखर गई है। और देर तक सोना, घर को अस्त व्यस्त रखना या शरीर की मूलभूत सफाई ना करना या ऐसा करना कि बस ठीक है, मन नहीं होता और अपने आसपास आपको लगता है कि आपकी जिंदगी वैसी बनती चली जाती है जो आप कभी भी जीना

नहीं चाहते। तो इसके लिए जरूरी है कि आप झांके खुद के भीतर, पाए उन कमियों को, उनका अवलोकन करें और फिर खुद से वादा कीजिए कि कोई मुझे नहीं निखारेगा, मैं खुद को निखारने की जिम्मेदारी खुद ही लूंगी। तो जरूरी है कि समयबद्ध योजनाबद्ध तरीके से काम करना कोशिश कीजिए। सुबह जल्दी उठ जाएं, नियमित तौर पर व्यायाम करें, आपका आहार व्यवहार संतुलित हो। मतलब ऐसा ना हो कि जो आप काम करना चाहते थे वो तो कर नहीं पाए और जिस काम में आपने ज्यादा वक्त लगा दिया वो करना जरूरी नहीं था। समय के साथ हमारी ऊर्जा, सेहत और सोच पर इन सब बातों का असर होता ही होता है। अगर ध्यान कम होगा तो काम में पीछे रह जाएंगे और फिर खुद की क्षमता से जब कम काम करेंगे तो खुद से ही शिकायत होगी। कोशिश कीजिए कि आपके पास जितनी भी ऊर्जा है वो आपके तय समय अनुसार ही खर्च हो और आप वो सब काम कर पाने में कामयाब हो पाएं जिसका वादा करा है आपने खुद से कि आप उन्हें पूरा कर दिखाएंगे। मतलब स्वयं अनुशासित होना जरूरी है, योजनाबद्ध होना जरूरी है और इसी से आ पाएगा खुद में निखार यानी आत्मनिखार। आइए सुनते हैं एक और गीत।

बहनों, हर तरफ खुशियों का साम्राज्य स्थापित रहे, तनाव चिंता आप सभी की जिंदगी से दूर रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ कार्यक्रम नारी मंच का समय अब समाप्त होने को है। हम चाहेंगे अपने सुझाव खतों के जरिए हम तक आप जरूर पहुंचाएं। नोट कीजिए कार्यक्रम का पता। कार्यक्रम नारी मंच द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हिसार, पिन 125001। आप अपने दिल की बातें ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radiohisar@gmail.com। अब दीजिए अपनी रेडियो सखी रश्मि को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी मंच, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों पर आधारित कार्यक्रम बाल सभा।
1: खास होने वाली है क्योंकि आज की बाल सभा में हमारे साथ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सैनिक स्कूल खाराखेड़ी के बच्चे, जो असम, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, यानी कहें तो देश के हर भाग से हमारे पास आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पहले की आज की बाल सभा का आगाज करें, पहले हम करेंगे आपका स्वागत आपका तालियों के साथ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, देशभक्ति केवल एक जज्बा नहीं है, देशभक्ति जिंदा रहने की एक वजह है। और तिरंगा केवल कुछ कपड़े या कुछ रंगों का मेल नहीं है, तिरंगा हमारी जान, हमारी शान, हमारे अस्तित्व की पहचान है। और इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तिरंगे को मान सम्मान के साथ आसमान की बुलंदियों को नापने का मौका देते हैं हमारे सैनिक। चाहे तापमान -20-40 पहुंच जाए या फिर हो रेगिस्तान मरुस्थल में चलते हुए सूरज की आग उगलती रोशनी, उसमें भी वो अपनी नौकरी पर, नौकरी नहीं कहेंगे, अपने जज्बे के साथ हमारी देश की सीमाओं को महफूज रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे ही सैनिक को बनाने की तैयारी, यानी सैनिक के भीतर देशभक्ति का जज्बा बनाए रखने का काम शुरू करते हैं ये सैनिक स्कूल, जिनमें से एक आज हमारे बीच पहुंचे हैं। आपके आज बाल सभा में जो आगाज करेंगे वो करेंगे हम अपने राष्ट्रीय गीत के जरिए। तो बच्चे हमें सुनाएंगे ये राष्ट्रीय गीत।

0: कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। खेतियां सोना उगाएं, वादियां मोती लुटाएं, आज गौतम की जमी तुलसी का बन आजाद है। मंदिरों में शंख बाजें, मस्जिदों में हो अजां, शेख का धर्म और दीन बरहम आजाद है। कितनी खूबसूरती के साथ आपने वंदे मातरम की जो राष्ट्र गीत हमें सुनाया, इसके लिए आप सब बच्चों के लिए। और देखिए ना बच्चों, हाल ही में जब मई का पहला दिन आता है तो मनाया जाता है श्रम दिवस, जो श्रमिकों को समर्पित होता है, लेबर्स डे के नाम से जाना जाता है। और कोशिश ये होती है कि बच्चे श्रमिकों का सम्मान करना सीखें। काम कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम को दरकार होती है सम्मान की। और ऐसे ही कुछ विचार हमसे साझा कर रही हैं रिद्धि। आइए सुनते हैं रिद्धि को।
1: सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं रिद्धि प्रीतम, सैनिक स्कूल खारा खेरी की कक्षा 8वीं की छात्रा। मजदूर दिवस पर आज मजदूरों के दर्द और उनकी पीड़ा को आपके साथ साझा करने आई, ताकि हम उनके जीवन को समझ सके, उनकी मेहनत को महसूस कर सके और उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें वह सम्मान दे सके जिसके वह सच्चे हकदार हैं। हर वर्ष 1 मई को पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन मेहनतकश लोगों को समर्पित है जो अपने श्रम से समाज और देश की नींव को मजबूत बनाते हैं। मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर से हुई थी। उस समय मजदूरों को बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उन्हें उचित वेतन भी नहीं मिलता था। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने लिए का नारा दिया। इसी आंदोलन की याद में हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहला

0: मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मद्रास अब चेन्नई में मनाया गया था, जिसे हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी ने शुरू किया। मजदूर हमारे समाज के सच्चे निर्माता हैं, चाहे वह खेतों में काम करने वाला किसान हो, सड़क बनाने वाला श्रमिक हो या इमारत खड़ी करने वाला मजदूर। हर कोई अपने परिश्रम से हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाता है। हम जिस घर में रहते हैं, जिन सड़कों पर चलते हैं, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, इन सब के पीछे मजदूरों की मेहनत छिपी होती है। आज के आधुनिक युग में भी मजदूरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उद्योग, निर्माण कार्य, परिवहन और सेवा क्षेत्र, हर जगह उनकी मेहनत दिखाई देती है। यदि एक दिन के लिए भी मजदूर काम करना बंद कर दे तो पूरे देश की गति रुक सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र के विकास में उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज भी बहुत से मजदूर कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, कई बार उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता। उनकी मेहनत के बावजूद उनका जीवन संघर्षों से भरा होता है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है। कई मजदूर अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात काम करते हैं ताकि उनके बच्चे बेहतर जीवन जी सकें। वे तप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना दिन रात काम करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके त्याग और संघर्ष को समझना और उनका सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। कवि की ये पंक्तियां मजदूरों के जीवन को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। वह हाथ पत्थर को आकार देते हैं, वही हाथ सपनों को साकार करते हैं। खुद धूप में तपते हैं उम्र भर, लेकिन दूसरों को ठंडी छांव देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम मजदूरों का सम्मान करें, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और उनके साथ समानता का व्यवहार करें। हमें यह समझना चाहिए कि हर छोटा बड़ा काम महत्वपूर्ण है और हर श्रमिक सम्मान का हकदार है। यदि समाज का हर व्यक्ति उनके प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण हो जाए तो हम एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मजदूर दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि हमें मजदूरों के त्याग, तपस्या तथा समाज के निर्माण व विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद दिलाने का अवसर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: दो बच्चों बजा दीजिए रिद्धि के लिए जोरदार तालियां। याद रखना बेहद जरूरी है कि मजदूर दिवस, श्रम दिवस केवल 1 मई तक ही सीमित ना रहे। हर दिन श्रमिक जो हैं वो सम्मान का हकदार होते हैं। हर दिन उनके लिए सम्मान हमारी नजरों में, हमारे व्यवहार में कायम रहे, यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अब पालसभा में हम रुक कर रहे हैं उस प्रेरणादायक गीत के लिए जिसे अक्सर प्रार्थना के रूप में भी गाया जाता है। तो आइए सुनते हैं सैनिक स्कूल खाराखेड़े के बच्चों के ये प्रेरणादायक गीत।

0: क्या बात है, कितनी खूबसूरती से और मुक्त कंठ से आपने बताया कि बलिदान अगर होना पड़ भी जाए तो देश के नाम पर वो फक्र के साथ हो जाते हैं हमारे सैनिक। कर्तव्य पथ पर चलते हैं, सादगी में विश्वास रखते हैं। और बालसभा सुनने वाले हमारे नन्हे मुन्हे साथियों को अगर लग रहा है कि वो भी किसी सैनिक स्कूल का हिस्सा बन जाएं, तो सैनिक स्कूल से जुड़ी कुछ जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं रेयांश। आइए सुनते हैं रेयांश को।
1: सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं रेयांश, सैनिक स्कूल खाड़ाखेड़ी, कक्षा 7वीं का छात्र। सैनिक स्कूलों की कार्यप्रणाली, प्रबंधन, देश के विकास में उनके योगदान पर आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। सैनिक स्कूल हमारे देश की ऐसी विशेष शिक्षण संस्थाएं हैं जो विद्यार्थियों को अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बनाती हैं। सैनिक स्कूलों की स्थापना का विचार 1961 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उस समय के रक्षा मंत्री श्री वीके कृष्ण मेनन ने इन स्कूलों की शुरुआत की ताकि देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग के बच्चों को सेना में अधिकारी बनने का समान अवसर मिल सके। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक रूप से इस प्रकार तैयार करना कि वे आगे चलकर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी NDA और अन्य सैन्य सेवाओं में प्रवेश कर सकें। साथ ही यह स्कूल केवल सैनिक ही नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी तैयार करते हैं जो देश के विकास में योगदान दें। सन 2022 तक भारत में 33 सरकारी सैनिक स्कूल संचालित हो रहे थे, जिनमें 2 स्कूल हरियाणा के कुंजपुरा और रेवाड़ी में हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने 2022 में नई योजना के तहत निजी व अन्य संस्थानों के साथ मिलकर सैनिक स्कूल खोलने की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर आधारित हैं। इसी योजना के तहत मेरा स्कूल सैनिक स्कूल खाड़ाखेड़ी भी सन 2022 में शुरू हुआ था। इस योजना के तहत कई निजी और सरकारी स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से जोड़ा जा रहा है जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल सके। इससे देश के हर कोने में सैन्य शिक्षा का विस्तार हो रहा है। यदि हम इनकी कार्यप्रणाली की बात करें तो सैनिक स्कूल पूर्णतः आवासीय विद्यालय होते हैं। यहाँ छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद, NCC और नेतृत्व कौशल का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता इन स्कूलों की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। यहाँ

0: वातावरण विद्यार्थियों को एक सच्चा देशभक्त और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। सैनिक स्कूलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। ये स्कूल देश को ऐसे युवा प्रदान करते हैं जो न केवल सेना में सेवा करते हैं, बल्कि प्रशासन, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भी देश का नाम रोशन करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सैनिक स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सशक्त माध्यम हैं। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी अनुशासन, साहस और समर्पण की मिसाल बनते हैं। आइए हम सभी मिलकर ऐसे संस्थानों के महत्व को समझें और देश सेवा की भावना को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: क्या बात है बच्चों, कितने अच्छे से रियांश ने हमें आपके स्कूल का परिचय कराया। सैनिक स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित हुए, उनका क्या इतिहास था, इससे रूबरू कराया। तो बजा दीजिए रियांश के लिए तालियां। और अब देखिए ना, सैनिक स्कूल और आप सब नन्हे मुन्हे प्यारे प्यारे बच्चे अपने सुरीले अंदाज में आज मौजूद हैं बाल सभा में। तो बाल सभा के इस कार्य को और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आपसे एक और देशभक्ति गीत।

और देखिए ना, इस देशभक्ति गीत के साथ जब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि हम सैनिक स्कूल का हिस्सा कर बनना चाहें तो क्या करें, ये खास तौर पे जानकारी हम साझा कर रहे हैं अपने नन्हे मुन्हे बच्चों के

0: सिक्स एंड नाइन्थ में होता है। सिक्स के लिए आपको 10 से 12 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए और नाइन्थ के लिए 13 से 15 साल। जो उम्र का लक्ष्य है वो 1 अप्रैल जिस साल में आपने एडमिशन लेना है उस साल को निर्धारित किया गया है। सैनिक स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसकी जिम्मेवारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई है। इसके फॉर्म्स अक्टूबर या नवंबर के महीने भरे जाते हैं। टेस्ट जनवरी में होता है जिसका रिजल्ट फरवरी एंड में या मार्च में आ जाता है और नया एकेडमिक सेशन अप्रैल में शुरू होता है, तो इसीलिए 1 अप्रैल को कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ माना गया है। धन्यवाद।
1: और इसी के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं आज सैनिक स्कूल खाराखेड़ी के बच्चे बाल सभा में शिरकत करने पहुंचे। जो ये मधुर से गीत आप सुन रहे थे इसमें वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अपनी भागीदारी निभा रहे थे कॉन्गो पे विराज। विराज के लिए हो जाए तालियां। तबले पर थे अहोन, ढोलक पर सुमित और ड्रम पे थे यही फाबा। तो बजा दीजिए इन नन्हे नन्हे हुनरमंद कलाकारों के लिए तालियां। और बच्चों अब हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप बताएं आपका नाम क्या है और भारत के किस हिस्से से आप पहुंचे हैं सैनिक स्कूल खाराखेड़ी में।
2: आध्या कक्षा सातवीं और मैं आई हूँ जम्मू और कश्मीर से।
3: सुहाना कक्षा सातवीं और मैं आई हूँ त्रिपुरा से।
4: प्रशीला कक्षा सातवीं और मैं मणिपुर से हूँ।
5: आरोही कक्षा सातवीं और मैं आई हूँ उत्तर प्रदेश से।
6: अहाना कक्षा सातवीं और मैं आई हूँ बिहार से।
7: सुमी कक्षा सातवीं मैं आई हूँ बिहार से।
8: कृतिका कक्षा सातवीं और मैं आई हूँ उत्तर प्रदेश से।
9: दिव्या कक्षा सातवीं मैं आई हूँ बिहार से।
10: जिज्ञासा कक्षा सातवीं मैं आई हूँ हरियाणा से।
11: प्रेरणा कक्षा सातवीं मैं आई हूँ महाराष्ट्र से।
12: जैनूर कक्षा सातवीं मैं आई हूँ हरियाणा से।
13: रिद्धि कक्षा आठवीं मैं आई हूँ उत्तर प्रदेश से।
14: लखीवाई कक्षा सातवीं और मैं आया हूँ मणिपुर से।
15: दाइना कक्षा सातवीं मैं मणिपुर से हूँ।
16: केन्या मेरा कक्षा सातवीं हूँ मैं मणिपुर से।
17: अमीलिया मैं कक्षा आठवीं और मैं मणिपुर से आई हूँ।
18: नैन्सी कक्षा आठवीं से हूँ मैं मणिपुर से।
19: रफीदा कक्षा आठवीं मैं मणिपुर से आई हूँ।
10: विदिशा कक्षा आठवीं मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ।
4: चांदनी कक्षा आठवीं मैं आई हूँ मणिपुर से।
6: वेदांती कक्षा आठवीं मैं मणिपुर से।
7: सुष्मिता कक्षा आठवीं मैं मणिपुर से हूँ।
2: चिकनवी कक्षा आठवीं मैं मणिपुर से हूँ।
3: सानवी कक्षा आठवीं मैं आई हूँ बिहार से।
11: सुमित कक्षा आठवीं मैं आया हूँ हरियाणा से।
18: ओहम कक्षा सातवीं मैं आया हूँ झारखंड से।
16: रेयांश कक्षा सातवीं मैं आया हूँ बिहार से।
5: विराज कक्षा आठवीं मैं आया हूँ गुजरात से।
13: याइफवा कक्षा सातवीं मैं आया हूँ आसाम से।
1: तो बच्चों देखिए ना आज की बाल सभा बहुत खास हो चली है क्योंकि मणिपुर बिहार उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर यहाँ तक कि कह सकते हैं कि भारत के विविध प्रांतों से आज हमारे साथ जो आपने शिरकत की अपनी प्रस्तुति दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हो जाए आपके लिए

फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार स्टिल आइकॉनिक।

0: Still Connecting India.
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: अभी आप सुन रहे थे बच्चों पर आधारित कार्यक्रम बाल सभा। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रतीक्षा हमारे साथ।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार। मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप, लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर शेर है।
0: जी बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को।
1: बहुत सही फरमाया आपने और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी, उनका ये बहुत मशहूर शेर है।
0: जी, और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो
1: ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
0: अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता। तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, शुरू 24 मई उनकी याद का दिन है।
0: लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब।
1: जी जी।
0: और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया।
1: लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस जी बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते आते आते आते पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा।
0: यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है और पिता के जमाने में जो

0: में थी वो भी उनकी कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब।
1: बिल्कुल,
0: तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने।
1: जी, जी, जी।
0: एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया
1: जी।
0: तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुश्तकिल, अरे साहब
1: क्या बात है,
0: का
1: क्या
0: संगीत
1: है, क्या बात है,
0: और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने।
1: बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मकता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्तक की, हम है मताए को चाओ। आइए इस गजल को सुनते हैं लता जी की आवाज में, संगीत मदन मोहन साहब का, और दे रहे हैं अपने श्रोता।

0: मजरूह लिख रही है वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या लाफानी गजल, वाह।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए, वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा।
0: तो श्रोताओं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरे अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था, 5 मिनट का, याद है ना?
1: मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था
0: जी,
1: और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है
0: जी। हाँ।
1: लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउस होल्ड माना जाता था, हर घर में वो नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता
0: जी। हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं, आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज। चित्रशाला, आज इस कार्यक्रम में सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल।
2: अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस की बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामत बहुत खूबसूरत बना लेता है, ये जानने के बावजूद। तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती है उसी तरह की होती है इश्क और मासूम की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिम्बलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी रात, जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सुबह तक चलेगी, सुबह नहीं है शायद सुबह न देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है, ये रंगे है ना, ये हमारे एस्थेटिक सेंस को प्रवोक करने वाले मजाहिर, ये चीजें जो जब तक जिंदा है, हमारी रात रात रहे, हमारी जिंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या न देखें, हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं। कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुशगरज है, तो इतना गम, इतना रंग जो हमें गवारा है वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिश गम कम थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिश गम कम थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, इतनी भी हमें बंदिश गम कम थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, कि कुछ जख्म नहीं खाए चलो कुछ गुल ही खिलाए, कुछ जख्म भी खाए चलो कुछ गुल ही खिलाए, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, कुछ जख्म भी खाए चलो कुछ गुल ही खिलाए, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू, अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाहजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर्म होता गमे रोजगार होता, मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया। देखिए शायद ये चीज आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें, मुझे दोनों एक ही लगे हैं। कि अब कार गहे दहर में लगता है बहुत दिल, अरे दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जो मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात है

0: ये जो मौजूदात है इनमें इंसान अहम तरीन चीज है, उसने दुख भी सबसे ज्यादा उठाए हैं, सुख भी सबसे ज्यादा उठाया है। तो अर्थ क्या है कि सहरा में बबूला भी है मजरूह सबा भी, सहरा में बबूला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारे आलम तो नहीं है। शुक्रिया।
1: तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने कांता जी के साथ भी काम किया है
2: जी।
1: और अब ये चीज तो क्लियर हो गई मनीषा जी,
2: जी
1: कि हम अपने वादे के अनुसार न सिर्फ गाने सुनवाते हैं बल्कि ऐसी शानदार और जानदार आवाजों में उनकी अपनी बातें, उनके अपने ख्यालात तक हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं
2: जी। हाँ।
1: तो अब आप ये बताइए कि मजरूह साहब की अपनी आवाज में जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है, कुछ और भी है आपके पास?
2: बिल्कुल है, और यही हमारी भी खुशकिस्मती है। एक इंटरव्यू है और हमारी विविध भारती के ही एक और अनाउंसर जो हुआ करते थे खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग।
0: मजरूह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यूपी के फजा में पले बढ़े, जवान हुए, लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से यानी जाने जाते थे, फिर बंबई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई?
3: सब मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादसों से गुजरी है
0: जी।
3: मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे मगर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो किसानों की जिंदगी और समाजी हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना
0: जी,
3: और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, लाठी लेके चलना।
0: अब शायद यही बातपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले सहजतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बातपन के साथ, शायद ये उसी का
3: हाँ वो हम लोग
0: का नतीजा है
3: जी। हाँ, हम लोगों का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजिया किया। तो साहब ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बाइकाट शुरू हो गया था
0: जी,
3: और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने ये तय किया कि साहब मैं उनका अकेली औलाद उनकी
0: जी,
3: उन्होंने ये कहा कि साहब मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा।
0: अच्छा।
3: जो मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की, अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ, अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी नहीं बन सका, और वहां से रिस्टिकेट किया।
0: अच्छा।
3: अपनी आजाद अरबी पर
0: जी।
3: और रिस्टिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ, और वहां मैंने तिब की तालीम हासिल की। तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी और कामयाब तबाबत की, लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी शेर शायरी का माहौल रहता था तकसीम से पहले, मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी, और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाग जो है ऐसी रिश्वत और ऐसा जोश है
0: जी।
3: चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा, और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा,
0: यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा,
3: हकीम पे हावी होने लगा और हो गया आखिरकार
0: जी।
3: चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना और उन्होंने कहा मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश है नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके भी जी देखा है, हालांकि उनके पास में जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई सुनवाई नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देखरेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए ड्यूटी सोसाइटी थी।
0: अच्छा,
3: उसके चेयरमैन
0: जी।
3: तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से ना कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए।
0: अच्छा।
3: तो मैं वहां तीन साल रहा सन 44 के आखिर तक
0: जी।
3: सन 45 में एक मुशायरा बंबई में हुआ तो जिगर साहब वहां से गुजरे, और मैं उनके जेर साया शेर तो पहले कहता ही था
0: जी,
3: लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेर साया राजे हुआ। हालांकि मुझसे किसी ने कहा कि तुम गजलें कहो, लेकिन वहां पर जो सुनने वाले आते थे मौलाना आसफ मोहानी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन
0: जी,
3: दानिश्वर दानिश्वर बड़े बड़े आते थे, और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जजवी बुजुर्ग को बुला लिया करते थे, और हमें शेर सुनाने पड़ते थे
0: जी।
3: तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप मुशायरे द्वारा को देखते हुए मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशारे उछारे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मगर आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत
0: शऊर आया।
3: हाँ, शऊर आया, लेकिन उस शऊर की कोई संत मैयत नहीं थी। और बस शऊर एक ऐसा कि कोई मुसबत बात, कोई अच्छी बात, कोई चाहे वो इश्क की हो, जमालियात की हो, समाजी हो, अखलाकी हो, लेकिन सियासी हो, लेकिन वो मुसबत हो, मनफी बात ना हो, तो जरूर रहा
0: पॉजिटिव एटीट्यूड।
3: अच्छा, तो जिगर साहब जब तशरीफ लाए वहां एक दिन, तो कर ले भाई तुम मेरे साथ मुशायरे में चलोगे बम्बई? मैं कहा चलिए। 1947 में मुझे लेके बम्बई के एक मुशायरे में जमाने में यहाँ, और वो इकबाल डे बनाया करते थे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुशायरा होता था, उसमें लेके आए मुझे। और यूं रात को मुशायरे में कुछ मेरी हवा बन गई, वो जैसे होते ना एक शायर की हवा बन जाती है। मौलाना असर मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे।
0: अच्छा।
3: जिगर मुरादाबादी उस महफिल में मौजूद, लगाना मौजूद, बड़े बड़े शोरा मौजूद, लेकिन वो एक गवैये लड़की थी, चले मेरी आवाज बन
0: गई। फिर गवैये नहीं, शायर भी अच्छे
3: हैं। एनी वे, कारदार साहब उस जमाने में फिल्म, एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते थे मुगल पीरियड से उनके मुतल्लिक के ताल्लुक से, और वो चाहते थे कि कोई उनको नया लिखने वाला जो गीत लिखे और उस माहौल की जबान को कहा अदा कर सके, उसकी तलाश थी। अच्छा, नए वही ढूंढते थे जो पुराने ज्यादा पैसे लेते हैं, नया कम पैसे लेगा। चुनाचू उन्होंने मुझे अप्रोच किया और अर्ली बैठ की मुझे 500 रुपए माहवार पर 1947 में नौकर लिखे। उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे, तो जो गया यू में फिल्म लाइन में आया।
0: अर्जुन बड़े मशहूर हुए थे, जो दिल्ली टूट गया,
3: दिल्ली टूट गया, उनको उनको सैगल मरूम पसंद था, तो उन्होंने वसीयत की थी कि ये गीत मेरी अर्थी के साथ जाए। मैं चुना चला और मैं ऐसा ही हुआ था कि ये गीत उनकी अर्थी के साथ गया था जब दिल्ली टूट गया। हम जी
0: कैसे तो अभी शोहरत,
3: जी हाँ शोहरत हुई, बहुत काफी शोहरत हुई, लेकिन फौरन ही। मैं दिलचस्प बात जो कह रहा हूँ वही कि मेरी देखिए 3-4 मोड़ हमारी जिंदगी के देखे आपने, वो सब बड़े दिलचस्प है और प्लान नहीं है
0: जी,
3: प्लान कोई नहीं है, सब खुशगवार हादसे की वजह से। अच्छा, फिर जब इससे मैं कुछ फायदा उठा सकता तो 47 पे फसादा शुरू हो गया। 6-8 महीने तक हमारी इंडस्ट्री बंद रही। फिर उसी जमाने में हमारा यहाँ की तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो एसोसिएशन थी, उनके मुसन्निफीन जो उनसे हमारा फायदा हुआ। और फिर हमने देखा कि एक शऊरी रवैया जो अब तक हमारे शऊर को कोई राह नहीं मिली थी, वो एक संत मिली हमें। और मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि आज जब से हमारे स्टेट्स में जमहूरियत का लफ्ज आया है, यानी हर शख्स को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कह सके। मैंने मुगल पीरियड में या बादशाही के पीरियड में होता यह था कि सियासत तो उस वक्त भी होती थी मगर शाही सियासत होती थी, जमहूरी नहीं होती थी, इसलिए कोई शख्स आजादी से सोच नहीं पाता था। अब ये जरूरी हुआ कि एक शायर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो इश्क़ मोहब्बत की बातें करो चुप हो जाए, बल्कि उसका एक समाजी रवैया भी होना चाहिए, उसका सियासी रवैया भी होना चाहिए। चुनाचे मेरा एक शेर था कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था।
0: वो यकीन और शक के दरमियानी रास्ते पर।
3: हाँ, यकीन और यकीन के दरमियानी रास्ते पर।
0: लेकिन एक सवाल यही ये उठता है कि क्या कोई भी शायर बगैर किसी आइडियोलॉजी, बगैर किसी अकीदे, बगैर किसी नजरिए से वाबस्ता हुए क्या अच्छी शायरी नहीं कर सकता?
3: कर सकता है। मतलब आप जयशंकर नसीम की वसूली लीजिए, गुलजार नसीम
0: जी,
3: उसमें कौन सा आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ अखलाकियात में मबनी है
0: जी,
3: कि नेकी करो
0: जी,
3: नेक बनो, अल्टीमेटली इसी पे एंड है उसका, ये हुनर अप्रोच है। वैसे तो किसी भी मुस्बत आइडियोलॉजी की बगैर कोई बात कोई मुतबर हो ही नहीं सकती, लेकिन जब हमने जैसा कह किया कि जब हमारी दुनिया ने जमहूरियत के नाम से अपने आप को जाना पहचाना
0: जी,
3: उस वक्त फर्द को जब आजादी मिली तब उसका अपना सियासी नजरिया हुआ, अपना समाजी नजरिया हुआ, अपना अखलाकी नजरिया हुआ, उसमें से अखलाक के बहुत से पुराने अकदार जो है उनको तोड़ फोड़ डाला गया,
0: अकदार
3: बन अंगारे लिख डाला हमारे अदीबों शायरों ने, जिसमें बहुत ज्यादा झिझोड़ने वाली बातें थी और राहिने की वो जज्बाती ज्यादा थी, ताकुल कम था उनमें, लेकिन उस वक्त वक्त का रद्द अमल था और उस वक्त जरूरी थी उस तरह की बातें। इस वक्त लिहाफ लिख डाला, मंटो ने गूल लिख डाली, तो इस तरह की चीजें थी।
0: लेकिन वही सा आपकी शायरी का जो एक मजमूरी असर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसाफिर है जो आगे बढ़ना चाहता है। मसलन आपका ये शेर कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग
3: जी,
4: जहाँ तलक ये सितम की सियारा चले, या ये मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
3: ये
4: आप इस किस्म के बेशतर अशार है, मुझे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है।
3: हमारे बहुत बड़े नकाब थे
4: जी
3: एहतशाम हुसैन साहब
4: जी,
3: उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी जो आप इस वक्त कह रहे हैं
4: जी। तो इसके पीछे क्या कोई शौरी कोशिश है या ये एक अंदर से
3: शौरी कोशिश? तो देखिए आप
4: जी
3: किसी एक नुक्ते नजर के जैसे मैंने बताया समाजी सियासी वगैरह उसको सामने रख के शौरी कोशिश तो सिर्फ नहीं अच्छे शेर कहने की।
4: अच्छा,
3: लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा उसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं तरक्की पसंद मुसलमफिन से वाबस्ता हुआ तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था जिसमें शकील मजानी कुमार अवार मंत्री इस तरह थे उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से मैदानियां पड़ी के साथ ये जो है तरक्की पसंद हो गया, तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तनहा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊं आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेकर सन 52 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं तनहा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की। 7 साल मैं अकेला रहा हूं, उस वक्त मैंने आपको शेर दिया मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाओ मंजिल न देख, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवां ने सहार न हो।
1: ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है जो स्टैंडर्ड होता है
2: जी,
1: तो उसका मयार होता है वो अलग ही होता है।
2: बिल्कुल,
1: वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है। और फिर बातचीत में अगर मजरूह साहब हो तो फिर क्या कहना है,
2: क्या बात है।
1: अब मजरूह साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरूह साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम है मताए कूचा बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और
2: समझ गए ना।
1: उसके बाद याद आता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना, हाल कैसा है जनाब का,
2: जी हाँ जी हाँ,
1: पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना, इस तरह की जो
2: क्या रेंज, क्या रेंज
1: है देखिए ना। और भी कई फिल्में हैं कई गाने हैं लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया था जॉय मुखर्जी के साथ, एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब, अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ।
2: आईएस जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल के कलाकार। और श्रोताओं आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ शागिर्द का बड़ी मियां दीवाने।
1: आप गाना सुनिए।

0: हम से सुनो।
1: मजरूह साहब की कलम से निकला ये एक मजाहिया गीत और बहुत दिलचस्प गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया अमर जी। अब
2: आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: साउंड, लाइट, साउंड, कैमरा,

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दे, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: बेखबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963

0: में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली। सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के चाहे खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेलेजाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती है। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जानी मानी संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस वर्ष 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की मां का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है भगत।

0: चर के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा।

0: और माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम चंचा के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: बेटे, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

सन 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: सिनेमा में माँ का रूप बदला है, अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर
1: मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ।
0: फिल्म एबीसीडी 2
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल, मरते चूलरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है,
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
2: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
3: हाँ, कुछ होगा अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
2: ओहो,
3: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चरला था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम जो एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पर जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना ऐसा करके बोलता, मैंने मेरे हाथ में किधर है।
2: जी जी।
3: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।
1: नैन हमारे सांझ सतारे देखें।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है।

कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा। मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

पहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग है। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे। आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम है मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया है।

0: अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत। अमर जी, तो अब करें अपनी श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा।
1: बिल्कुल लेंगे।
0: तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपके दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में एक रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में एक किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट

0: के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

मुकद्दर का सिकंदर सुनकर गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी की लिखे इस गीत की तर्जुमाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

अजीज काजी का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का ये गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल नदीम श्रवण की तर्ज।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की।

0: आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म जिल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर इस प्रोग्राम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं तो अपने रेडियो सेट को जरा करीब लाइए क्योंकि आपके रेडियो सेट पर अब इंतजार खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। दूर दूर से आपकी भेजी गई बातें हम तक पहुंच रही हैं जिनमें कभी खुशी कभी थोड़ी सी तलखी नजर आ रही है, कहीं मुस्कुराहट है तो थोड़ी मायूसी भी नजर आती है। यानी हवाओं की पालकी पर सवार संचार के माध्यम से हम तक और आप तक जो संवाद पहुंचते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, है ना? ये भी एक कमाल की बात। ऐसी ही प्यारी प्यारी भावनाएं गीतों की शक्ति में ढल जाती हैं जिसे आप तक पहुंचाती है आपकी प्यारी प्यारी विविध भारती। जरा सोचिए ना श्रोताओं कि अगर ये संचार, ये दूर संचार के माध्यम हमारे बीच ना होते तो क्या हम और आप जुड़ पाते? अपने प्यार, अपनी नाराजगी और खूबसूरत गीतों का ये फसाना क्या गुनगुना पाते? तो मौका है अपने आप में लाजवाब। और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से श्रोताओं के जो गीत हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में मिलते हैं। वैसे आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत सारे श्रोताओं की हम तक पहुंच चुकी है। मुझे देखकर ये बड़ा अच्छा भी लगा कि कुछ श्रोताओं के गीत तो लगभग पूरी पूरी तरह आज के कार्यक्रम से मिल रहे हैं। तो जल्दी से बता देते हैं आज की इबारत। वैसे ये इबारत आप फेसबुक पेज पर भी हमारे पढ़ सकते हैं। आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते से जुड़कर अपनी बातें अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेज सकते हैं। तो इबारत आपको बता देते हैं, दूरी चाहे जितनी भी हो हवाओं की पालकी पर सवार परदेसियों की सलाम आ ही जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गीतों में छुपी प्यार की दास्तान कोई सुनता है कोई कहता है। अगर मामला लिफाफे का हो तो पति की भी जरूरत होती है। रेडियो तरंगों पर बजते वो गीत तो जिंदगी भर नहीं भूलते जो कुछ खास पलों के गवाह होते हैं। बेतार के तार से बंधे आते गीत कभी गम उठाने के लिए जीने का हौसला देते हैं, कभी ख्याल बनकर उभरते हैं। देश विदेश में अपनों से जो वीडियो कॉल पर होती बातचीत भी इन्हीं तरंगों पर सवार होकर हम तक पहुंचती है, फिर चाहे देहरादून हो या रंगून। सुरों का ऐसा साज जैसे चंचल नैन बात करें और छुप जाएं, सुर लहरियों पर सुनाई देते नगमे जैसे मन का नगर लूट लेते हैं। आहटों ने कहा कोई मतवाला लगता है, मन कहता है सुनो। रेडियो तरंगों के लय पर ये गीतों की महकती खुशबू है, इसे बस महसूस करो।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें

0: मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद सभी विभागों को सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग और ईंधन बचाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुरूप हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने दोनों विभागों में सरकारी वाहनों के उपयोग के संबंध में प्रभावी कार्रवाई शुरू करके एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्री ने अपने काफिले से पायलट वाहन को भी हटा दिया है। समीक्षा के बाद मंत्री के कार्यालय से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 9 वाहन और लोक निर्माण विभाग से 8 वाहन तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए गए। श्री रणवीर गंगवा ने कहा कि सरकारी वाहनों का उपयोग केवल आवश्यक सरकारी और जन कल्याण के कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा दें, अनावश्यक यात्रा से बचें और ईंधन बचाने के लिए वाहन पूलिंग को अपनाएं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को वाहनों की लॉगबुक और ईंधन के खर्च की नियमित रूप से निगरानी करने के भी निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिसार केंद्र द्वारा संगीत कार्यक्रम व मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हिसार केंद्र का संचालन करने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष बहुत ही गौरवपूर्ण रहे हैं। एक समय में आकाशवाणी ही हमारे पास सूचना, जानकारियों व मनोरंजन का माध्यम था। बदलते परिवेश में आज भी आकाशवाणी उतनी ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम भी आकाशवाणी के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। कैबिनेट मंत्री ने मैराथन को झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि आज मैराथन में हिसार से बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों, खेल प्रेमियों सहित आम लोगों ने भाग लिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई को अर्हता तिथि मानकर हरियाणा में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। पंचकुला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि बीएलओ 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे तथा प्रारंभिक प्रकाशन 21 जुलाई को सभी प्रकाशन स्थलों व मतदान केंद्रों पर निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान दावे और आपत्तियां 21 जुलाई से 20 अगस्त तक जमा करवाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फरीदाबाद के सेक्टर 3 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार देर रात एक गर्भवती महिला का प्रवेश द्वार के निकट प्रसव होने की घटना की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। पूरे मामले की जांच फरीदाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जयंत आहूजा और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रचना की अध्यक्षता में गठित जांच समिति कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी और इमरजेंसी के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिजनों को इमरजेंसी द्वार से प्रवेश होने की जानकारी नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आपको वापस लिए चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर।
2: अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है मेरे पिया गए रंगून और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज्यादा

खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत, कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है। ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये जिंदगी का सफर, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो जरूर बताएं कि जब कोई नई चीज आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक जमाने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फोन किसको लगाया?

दास्तां कैसी भी हो, श्रोताओं, प्यार की हो, तलखियों की हो, गुस्से की हो या फिर मुस्कुराहट की हो, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो सुनाई जाएगी। तो ये गीत जो था दिल की ऐसी ही बातों का मर्म हमें समझा रहा था। कैफी आजमी की ये रचना थी, हेमंत कुमार की तर्ज थी। फरार फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत के पहले दो दूनी चार फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के बोलों को सुर में ढाला था हेमंत कुमार ने, और इस गीत की जो डिटेल्स थी यानी पहले गीत की, वो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीतों के बारे में प्यार की दास्तान तुम सुनो तो कहीं, हमने सनम को खत लिखा, मेरे पिया गए रंगून, और तमाम ये गीत इन्होंने बताए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि रेडियो के इन जादुई तरंगों का सफर सिर्फ शब्दों और सुरों तक सीमित नहीं, बल्कि ये इंसानी जज्बातों का एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जो सरहदों के सारे नक्शे मिटा देता है। जब हवा में तैरती हुई कोई धुन किसी उदास दिल को छूती है तो तन्हाई के अंधेरे पल भी उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठते हैं। ये तरंगे सिर्फ आवाज नहीं पहुंचाती, बल्कि दूर बैठे अपनों की धड़कनों और उनकी मुस्कुराहटों को हमारे बेहद करीब लाती हैं। इस बेतार की दुनिया में ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही दूरियों का कोई डर। यहाँ तो बस सुरों की एक ऐसी महफिल सजती है जहाँ हर कोई बंधा चला आता है। सच ही तो है, टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी बदल जाए, लेकिन रेडियो तरंगों की लय पर बहती यादों की ये अनमोल विरासत हमेशा हमारे दिलों को इसी तरह गुदगुदाती रहेगी। वैसे रेडियो पर किस गीत का आपको इंतजार रहता है श्रोताओं, कि ये गीत बजे तो आपको बहुत अच्छा लगे, और किसी खास मौके पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करते हैं। वैसे न सिर्फ रेडियो की ही बात है, अगर हम दूर संचार की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टेलीविजन है वो भी आ जाते हैं। कुछ एक नगमे हैं जिनमें से कुछ आज हमने लेने की कोशिश भी की है। तो टेलीविजन की क्या यादें हैं, यानी टीवी दूरदर्शन की क्या यादें हैं, ये आप हमसे बता सकते हैं। वैसे अगर आप बताना चाहें तो ग्रामोफोन की बातें भी बता सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स आते थे उनकी बातें भी बता सकते हैं, सीडीज की जो बातें हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हवाओं की तरंगों पर ही हमारे दिल के करीब आ जाती हैं। एक हमारे और श्रोता लिखती हैं, सुहाना सफर के कुछ शब्द और संभावित गाने, दूरी हवाओं, पालकी परदेसियों, प्यार दास्तान, देहरादून रंगून, गम उठाने, ख्याल मन का नगर मतवाला, दूरी न रहे कोई, कुछ एक गीत इनके नहीं मिलते, बाकी तो लगभग सभी मिल ही रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा गीत आ जाता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज प्रोमो पोस्ट बहुत देर से आई, सुबह 3 बजे नींद खुली, तब से अब तक 5-6 बार पोस्ट ढूंढता रहा, अभी 7:30 के लगभग कामयाब हुआ। तो ये सुनकर, ये जानकर भाई आपकी नींद खराब तो जरूर हुई नींद आपकी, लेकिन विविध भारती से आपका जुड़ाव इस बात को दर्शाता है, और आपने बड़े ही प्यार से ये बात हम तक लिख भेजी है। वैसे इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हमने सनम को खत लिखा, कभी बेख्याल होकर यूं ही छू लिया, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। इस गीत को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है श्रोताओं, और इस गीत की क्या यादें हैं ये आप बताइए, किन पर फिल्माया गया है।

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोता जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज अनिल बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई खत ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस खत का इंतजार है, या फिर इंतजार खत्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये खत नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतजार रहता है, न वो खत आता है न वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये जिंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओं कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामोफोन के सेट पर नजर आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामोफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए? फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज्यादा मैच नहीं करते हैं। तो इसके लिए तो ये जरूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप दो तीन बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्जाम देते थे, कॉलेज में एग्जाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है। लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम एक दो बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए, तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो जरूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मजमून भी ऐसा ही है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है सुरीला सफर में कुछ शब्द के गीत बज सकते हैं जैसे दूरी हवाएं, परदेसी पालकी रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई तुम इतने करीब आओ, दूरियां नजदीक हैं परदेसियों से, इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती है आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहां तक दूरी की बातें हैं श्रोता, जब दूरियां नहीं होंगी तो नजदीकियों का क्या मजा, इसलिए दूरियां हैं तो नजदीकियां हैं और जब नजदीकियां हैं तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें दूरियां ना आ पाए। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर फिर जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है, हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेली कम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं।

यकीन मानिए श्रोताओं, जब हृदय जीव तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयां देती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताजा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओं, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार जरूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था। बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्म आया गया, भारत भूषण भी नजर आते हैं। साहिल जाह्नवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नजर नहीं आया है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डाक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाके का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा जबरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मजा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मजा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं ये बात जरा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में

0: हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थी वो थोड़ी देर से पहुंचती थी, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराजगी चल रही है यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा तो बस मौका है, जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी जरा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिल दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो की सुर लहरियां कम केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती है। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामोफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल, गद्दी में इबादत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून, देहरादून, हवा, पालकी, सवार, चंचल मैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता है वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था, कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो है वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं, मुस्कानें, आवाजें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा की मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबूएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।
1: ओ देने वाला

0: जैसी अभिनेत्री अमिता पर फिल्म आया गया, ये गीत था गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेशी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारी और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहिए कितनी भी हो, दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं। कभी यादें बनकर, कभी संदेश बनकर, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद, दूरियों के बावजूद रिश्तों की नजदीकी और सुन की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का मेरा, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।

शुदा फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख

आवाज नहीं श्रोताओ, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। सुरों की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तुम नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना। दूरी न रहे कोई तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ, आइए मिलते हैं एक बजे सुरीला सफर के बाद, दूर संभाल रही है।

कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, राजेंद्र कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था। और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: प्रभादुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति गुरु की और वंदना की राधे राधे। वंदना,
1: हाँ जी,
0: देखो हम ब्रजवासियों को जीवन कितना बढ़िया है।
1: जी बात तो आप बिल्कुल सांची।
2: पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और जर्मी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
0: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम

0: असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं कक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता पर प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन का शुल्क कम कर दिया है। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बु जिले में जन्मे कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in India-Sweden relations. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. This visit is the third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands elevated their ties to a strategic partnership and inked 17 agreements to boost cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, P. Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows.
3: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
2: His remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah termed AI and deep tech as the main pillars of the future economy, inaugurating the Million Minds Tech Park Phase 1 and Gremi City Campus.

फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में सहेल ध्यानवी के बोलों को सुर में ढाला मदन मोहन ने और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान मोहम्मद सरफराज खान विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर वैशाली गवाड़कर कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी और अभिजीत गवाड़कर राही भी यहीं से सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाड़कर की ये फरमाइश थी। मंचा गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं साहिल ध्यानवी के बोल हैं खयाम का संगीत।

0: नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या।
1: इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेर तहसील तेलहरा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वीबेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, करमवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

बर्मन के संगीत निर्देशन में गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोता, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहां से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मंच है गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओ, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मंच है गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

ये है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला?
1: आप कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो मेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मैं इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप,
3: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
2: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं। आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण

0: तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
1: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है। रनिवास की इतनी रानियों के रहते
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
1: हम निश्चिंत हुए आर्य। अनसुआ, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
2: हाँ चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचाए।
3: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला? सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
3: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुया, चली
0: चली नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
3: जी।
0: कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
3: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
3: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
3: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
3: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
3: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ अरे। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
3: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी? बताओ तो।
3: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो।
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
3: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
0: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ।

0: क्या कर रही हैं आप?
1: अरे चक्री, आप अपने प्रेम से विदा ले, रात आ पहुंची है।
0: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतमी इधर ही आ रही है। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
2: ठीक है।
1: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
0: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
1: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
0: अच्छा,
1: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
0: हाँ, चलो माँ।

0: ये संताप हटने वाली है ठाकुंज। विहार के लिए बहुत शीघ्र में फिर उपस्थित होंगे और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
1: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त

0: और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर भरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
1: बचाइए बचाइए काजल, बचाइए, यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मुरलाने लगे हैं। रघुवंशी पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
2: इन राक्षसों ने फिर से रोटा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब उन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपट नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कर्ण को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ,
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई। नहीं,
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कर्ण भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह, मैं तो भूल गई थी। चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: ये क्या अनर्थ हो गया? लगता है अपने बेसुध में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटाना। तब तक मैं अर्घ्य का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा।
1: भगवान, इस स्टील की टोकरी को भी अभी गिरना था। अनुसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनुसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही

0: दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो, हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ए अनुसुया, उठ ना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहा हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रेमवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू ही तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कर्ण को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कर्ण को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ,
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कर्ण वहां उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान!
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कर्णों को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
2: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कर्ण जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, आकाशवाणी हुई।
3: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
2: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
2: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
4: गौतमी, शरदोत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
2: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: एक तो अनुसुया मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
1: नहीं शकुंतला, नहीं,
0: इस तरह तो तू हमें भी।
2: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
0: कितने सुंदर, कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र, ये सलोनी महावर, ये आकर्षक आभूषण।
2: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
2: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
0: माँ, माँ,
2: प्रियंवदा, अनुसुईया, अब और

0: उतना चली जाएगी। सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसू को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तार कर्ण इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद ही वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष। इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मन मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो उन्होंने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हूं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं। बाबा बाबा बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिलूं। बाबा
1: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।

0: 한 번 주었으며 전등 이거 아무게 브락시게 하는 락은 어디든고 我告别呀。
1: इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।

0: खींच रहा है।
1: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
2: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
3: हाँ शालग्राम, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
2: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
3: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग। पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना, और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
0: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। और शकुंतला हमसे गलती में ना हो सकी। तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे।
3: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
0: अनसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी। बोलो।
3: इतनी अधीर न हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर साज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
0: शकुंतला, राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह समझ

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1985 जमाना।
1: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
2: क्या
0: 1993 फिल्म

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड वो प्रमाण तो रेमनॉल्ड लैब में गए नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त क्या कैंची में लगाई नीचे लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे जैसे कंपाउंड में आए मेरे पुरुष साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका
0: जी जी जी
1: हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है तो भी जा चुके जो अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
0: हाँ
1: तो बहुत तारीफ हुई राखी जी का बहुत योगदान था कि उन्होंने काम किया
0: नहीं तो एक काम करते हैं पहले दूसरे आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की
1: बात करिए।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे, मतलब दीवार के बाग का थॉट था, मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने, मेरे राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में त्रिशूल था ना,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते हुए काम करता हूँ, कोई ऐसा फिर जया जी के साथ मैंने जो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर की, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चर हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो दो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट है, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दो डेटे में जाएंगे वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ उनके असिस्टेंट एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्ट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूंगा आपकी पिक्चर, कभी ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी जी जी।
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा तो उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे ढूंढते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था,
1: ओके ओके
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन उसमें चेंजेस नया न्यू कमर राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहे करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर लिया, तो मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुना उन्होंने कहा ये आठ फिल्म का आइडिया है,
1: अच्छा
0: हाँ जब ओरिजिनल तो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो बाकी जो है कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इंस्टीट्यूटली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था उनका फेस आया, उन्होंने वो भी दिखाया, ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसने लॉजिक लिया कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की नहीं, उनकी जो उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का,
2: ये रिस्की नहीं था उस वक्त,
0: रिस्की था
1: जी
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और लूटन को डालते हैं,
1: अरे बाप रे
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले, तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आयशा से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी,
0: मैं चिंटू से बात कर चुका था, फिर मेरे डॉक्टर उसको ऐसा कह रहे, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया चिंटू से, इसमें मैं जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में, मैंने कहा ऐसा ऐसा सोचा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया।
0: फिर मैंने कहा तो बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा को छोटा है फला क्यों नहीं, मेरे रूम अच्छा नहीं, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी,
0: इस तरह से काम करती थी, बहुत डिवोटेड काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं करूंगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: वो असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई।
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस फिल्म से, वो तो उस वक्त तक तो आज भी और उस वक्त भी जिसको नहीं करना है वो जाओ भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को ट्रेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ कि तुम्हें कुछ बुरा ना लगे,
1: हम
0: पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैथिली में कहीं लगा देंगे, वो साथ में चलती रहेगी। मैं बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे, उतार दी गई पिक्चर उनकी, चैन अगली पिक्चर जो थी मेरे रमेश शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो गुलशन जी रिलीज कर।

0: क्या मौसम है,
1: क्या बात है। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का वो था, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए,
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम दाप के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली
1: भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया मैंने ये चीज कहा ये तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट आने में उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी तुम उससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया करेगा पिक्चर, बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी और यश जी के यहाँ जाकर फिटिंग करनी पड़ेगी जो नारा पार्टनर हुए पालेरी पे, बोला करूंगा और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त शूटिंग बना,
1: बहुत अच्छे गाने चले
0: बहुत। नहीं फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास
1: अच्छा
0: करने के लिए, तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा। ओ क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था, वो कुछ हुआ था ऐसा।
1: हाँ
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन और दत्ता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है दत्ता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी। फिर मैं आया तो मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म एक बनाई है, मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था, तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: इसमें सारे गाने अच्छे
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी।
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जो जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर कह दिया था क्या मेरे साथ करो पिक्चर, ऐसे बड़े प्रोड्यूसर। हुआ ये कि रमेश बैल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, रसायन में रहता था, कोई आते जाते जैसे ही यहाँ जाना है अगर पाली तो वहां पे उसके पास रहता था, बैठते चाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था, थॉडी, क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे, थॉडी कर मेरे लिए पिक्चर, रोड मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर, मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अभी, वो करे तू भी कर एक पिक्चर, दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेजे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलर को ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली चेहरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी।
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हम आदत से फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छह महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
0: यस,
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊंगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए। सुनकर घर ही सिटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया, जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी है ये है, तो मैंने गुलजार साहब का पूछा,
0: वाह वाह,
1: उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही।
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता हूँ, गुलजार पापा मिलने आऊं, आ जा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे आपका और आर डी बर्मन का।

0: भी है समथिंग समथिंग रमेश वेलपुर उधर है और डायलेक्ट भी लिख लीजिए आप।
1: बाबा
0: तो मैंने फ्रेंड बनाया हुआ है उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग रहा है डायलॉग है नहीं करना तो स्क्रीन पे डायलॉग है सॉन्ग ऐसा तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ उन्होंने सुना तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था मद्रासी फिल्मों की तरह इतनी फिल्में देखी तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा मैं करता हूँ और वो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले हुए वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं
1: हाँ ये कौन है।
0: अब मैं गया राखी जी के पास राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ आपको जो रोल पसंद आए अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल और नूतन है बड़ी बहन
1: ओके
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था उनका उनकी फिल्में देख ले के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो
1: उन्होंने ही बोला
0: हाँ बोला मैंने कहा मेरा रेखा का कोई निर्णय लेना नहीं है कुछ काम नहीं किया कभी भी और मूडी किस्म की है मेरे को बोले मैं अभी फोन करती हूँ उन्होंने फोन लगाया रेखा ने कहा मैं यहाँ व्यू पार्लर स्क्रीन में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ
1: हाँ।
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो तो मुझे एक आध बात पहले उत्तर मिली है एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों की एल्बम देख रही थी कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग है तो मैं गया मैंने कहा ये ऐसा सुनो लंच खाना खाओगे मैं कहीं खा के आऊँ अच्छा दो मिनट में मैं खा रहा फटाफट खाना खा आ जाओ सुनो अब मैंने सुनाना शुरू किया इंटरवल हुआ जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी मैंने कहानी पूरी सुन तो लो मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी
1: डन हो गया
0: और इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया
1: वाह वाह वाह क्या बात है
0: मैंने आके रमेश भाई को खबर दे दी प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया रेखा चली हुई रूम थी राखी चली हुई रूम थी है अब साहब प्रॉब्लम आ गई हीरो कौन रोल करेगा शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी ने लोग डबल रोल रखा करते थे हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है वो ऋषि कपूर लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं तो मैंने एक लिस्टेड वीकली में फोटो देखा था ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक इज अंकल शशि कपूर
1: वाह वाह वाह
0: मैं तस्वीर ली कटिंग काटी शशि कपूर के पास पहुंच गया सर एक प्रॉब्लम है बुरा मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का सिस्टर तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने वो लोग मेरी टैलेंट देख चुके थे बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया मैंने कहा आप मेरे सब्जेक्ट सुन लीजिए अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा अगर आपको आपसे डिसीजन दीजिए मैं क्या करूं अच्छा थोड़ा घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे नाश्ता साथ में करेंगे मैं हार्कनेस रोड पहुंच गया सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया बोला बैठ जा गाड़ी में मुझे नटराज शुरू हो जाना बहुत दूर है आराम से कहानी सुनाओ जल्दबाजी नहीं करना पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में चलाकी की थी अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी रोल छोटा था 420 की मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था दी एंड
1: हाँ।
0: गेट में गाड़ी रुकी उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूं लेकिन एक शर्त पे मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए कहीं फोटो सरप्राइज आऊंगा किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूं
1: अरे बाप रे
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहे शशि कपूर ऐसा होना चाहिए मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने डन वो अंदर चले गए मैं बड़ा

0: सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरा आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी नहीं है, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों रोलों के आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं। अच्छा, कोई और हीरो नहीं है उनके?
1: हाँ।
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है।
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ। तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे।
0: और फिर कर अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा अरे रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, तो ना कर देंगे करूंगा। तिल ये आउटडोर में कहीं बैठे होते, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा मेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ हो गई। और मतलब यह है कि बेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में, तो कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि ठीक है थोड़ी, वैसे भी तू सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब दो चार चीजें बनती है, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो है
1: नहीं बहुत अच्छे रहते मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। अब ये देखिए कि इतने हम लोग उतना क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेरनी की हुई थी मेरे, हम ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल डेटे दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूंगा, बैठे हुए

0: गरीबों की है, थिंकिंग जो है गरीबी की है।
1: जी जी जी जी,
0: अलबत्त तब से मैं आज तक योगक्षेम करता हूँ।
1: क्या
0: और शशि कपूर दो बार सेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहां पे जाते थे वहां पहले सेव करते थे।
1: अच्छा, तीन लुक के लिए
0: एकदम।
1: वाह वाह वाह।
0: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
1: और ऋषि कपूर की यादें?
0: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की,
1: हाँ
0: वो पिक्चर जब कहानी सुनी रहती है चोपड़ा जी की पहली बार,
1: हाँ
0: तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है, मुझे अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
1: जी,
0: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
1: जी।
0: मैंने कहा ये शर्त में मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहां शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ ये भी आकर रोज में बैठता था, डबू साहब भी आते थे वहां पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते। बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डबू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहना है रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा
1: सकता
0: रख सकता हूँ, लेकिन भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वर्क सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूंगा तेरी पिक्चर। वही बोल दिया। और वो दोस्ती जो थी, जब मैं पालील पे आया तो 7 वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है वो क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं देर पिएगा। वहां पे भी आउटडोर में बसों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहां बार थी ओब्राय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बार बर्फ गिरी हुई है, और वो ठंडी करके आया ठंडी में काम पर रहा हूं, साले ये मर जाएगा कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन है एक्टिंग? नहीं शराब नहीं पीता। अरे शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ।
1: अच्छा,
0: यश जी को मैंने सुनाया था कोने शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोने गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: जैसे कि आप जानते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, जिनका रिले आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से किया जा रहा था। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हिसार, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।

इस साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, हेलो हिसार में गीतों की बहार लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके लिए। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी रितु कौशिक।
1: हेलो
0: हेलो हिसार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बता दीजिए।
1: राम राम रितु जी, मैं महावीर बोधा बोल रहा हूँ गांव मतानी से।
0: गांव मतानी से बोल रहे हैं महावीर जी, कैसे हैं आप और खेती बाड़ी करते हैं गांव में?
1: वो खूब खेत के अंदर बैठा हूँ दीदी और अच्छी हवा का मजा ले रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है ना कि प्राकृतिक वातावरण में बैठे हैं आप। और आजकल बहुत मुश्किल से
1: ठंडा वातावरण है, खूब अच्छी तरह। अभी सोच रहा था हम घर जाएंगे खाना खाएंगे, फिर वो 11 बज गए तो वहाँ चलो वहाँ पहले हेलो इशार में बात करते हैं, काफी दिन हो गए वहाँ बाद में जाएंगे घर।
0: जी बताइए, आज हेलो इशार में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज है किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, शायद आशा जी की आवाज में होगा ये गाना।
0: जी ठीक है महावीर जी, भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत, आप सुनिए।

0: मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: गाँव कोट जिला मुहानी से रानी चाली पहचान भी क्या मैडम जी?
1: बिल्कुल, मैं पहचान गई थी आपकी आवाज, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे ही पूछ लेती हूँ। कैसे हो, बहुत दिनों बाद आपने फोन किया।
0: अच्छा मैडम जी, काम में बिजी रहते थे इसलिए कॉल तो लगाते थे फिर लग नहीं पाती थी।
1: आपके भाई से मैं अक्सर पूछा करती थी आपके हालचाल।
0: हाँ मैडम जी।
1: क्या हुआ, आपने शादी कर ली?
0: हाँ मैडम जी, शादी हो गई।
1: और पढ़ाई वगैरह? अच्छा, चलो बताइए कौन सा गीत सुनेंगी आज। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। अच्छा, चलिए ठीक है रानी जी, भेज रहे हैं आपकी पसंद वाला गीत।
0: ठीक है मैडम जी।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत हेलो हिसार कार्यक्रम में। नाम बताइए।
0: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जिला उज्जैन से, बड़ी धार्मिक नगरी से बोल रहे हैं आप।
0: जी बिल्कुल, महाकालेश्वर बाबा का दरबार लगता है हमारे यहाँ पे।
1: जी दूर दूर से।
0: और काफी मतलब स्वच्छ और साफ शहर है। जी रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए श्रद्धा लोगों के लिए, ताकि आने जाने में असुविधा ना हो।
1: अच्छा, उज्जैन जाने के लिए कोई खास वक्त होता है या पूरे साल भर आते रहते हैं जो दर्शन?
0: जी ऐसे तो श्रद्धालु पूरे साल भर आते रहते हैं, लेकिन सावन महीने में काफी भीड़ रहती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने में बाबा का दरबार में जो एक बार आ जाए तो उसे बार बार आने का मौका मिलता है और उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। और हर सावन महीने के हर सोमवार को शाही सवारी भी निकाली जाती है महाकालेश्वर बाबा की।
1: तो बहुत भाग्यवान हैं आप, ऐसी धार्मिक नगरी में आप रहते हैं जहाँ बाबा महाकाल का दर्शन होता है आपको।
0: जी बिल्कुल दीदी, एक बात और, जो महाकालेश्वर बाबा की भस्म आरती होती है सुबह के 5 बजे, उसमें अगर एक बार शामिल हो जाए बाबा की भस्म आरती में तो उसे कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। तो हम ऐसे जगह पे रहते हैं और बाबा के चरणों में हमें स्थान मिला है, हमें इस बात का हमेशा गर्व रहता है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको भी मतलब हम अच्छे से सब बताते हैं, गाइड करते हैं, जहाँ पे उनको मतलब आसानी से पहुँचाया जा सके और बाबा का दर्शन कर सके।
1: जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये बता दीजिए कौन सा गीत है आज जो हेलो हिसार में आप सुनना चाहते हैं?
0: जी बिल्कुल बताना चाहूंगा दीदी, मैं फिल्म का नाम है सेहरा और गाने के बोले पंख होते तो उड़ाती रही।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, स्वागत है हेलो हिसार कार्यक्रम में। नाम आपका जान सकते?
0: जी मैं वीरेंद्र भयान बोल रहा हूँ।
1: जी वीरेंद्र भयान जी,
0: मैंने कहा ये लव बुक करवाने गया जी, अब जाके वहाँ आएगी, पहले कमी आ रही थी।
1: अच्छा अच्छा, बताइए कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आजकल?
0: जी बढ़िया, मैं जी अभी तो वेले हैं जी, आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: अच्छा, वेले नहीं होंगे तो प्रोग्राम नहीं सुनेंगे? हाँ चलिए, अच्छी बात है। बताइए आज कौन सा गीत है जो हेलो हिसार में फरमाइश करने वाले हैं आप?
0: मेरे को भी सुनना जी, दिन में देख लूंगा गीत है जी, गीत की वो नहीं करार हो ना जाए, मुझे डर है कहीं प्यार ना हो जाए, ये दीप नारायण के बाद में।
1: चलिए ठीक है, भेज रहे हैं वीरेंद्र जी आपको, और सक्रिय रहा कीजिए आप जैसे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप सभी श्रोता जुड़े रहते हैं जब हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हिसार में स्वागत है आपका।
1: जय हिंद मैडम। गवर्नमेंट
0: कैसे हैं आप और कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए। कैसे
1: कला से कृष्ण पूनिया बोल रहा हूँ सर। मैडम बढ़िया
0: हैं कृष्ण जी?
1: जी, आपकी सुनाओ जी। आकाश पानी परिवार कैसा है जी?
0: बिल्कुल बढ़िया है। और कामकाज कैसे चल रहा है आपका?
1: हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहे जी।
0: और बता दीजिए किस तरह के गाने सुनते हैं आप, किस तरह के संगीत का शौक है आपको?
1: बस गाने, पुराने गाने उन्हें सुनने का ही शौक है जी।
0: नए सुनने का नहीं है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज
1: आज एक बाजार फिल्म का गाना है जी, सैफ अली खान की फिल्म है।
0: जी।
1: जिस रास्ते से तुम गुजरे वो रास्ता हमने छोड़ दिया।
0: ठीक है कृष्ण जी, हम आपकी
1: हाँ
0: ये
1: जी,
0: फरमाइश,
1: सैफ अली खान का बाजार फिल्म का।
0: ठीक है, हम आपकी ये फरमाइश पूरी कर रहे हैं। आप सुनिए हेलो हिसार में आपका पसंदीदा गीत।
1: धन्यवाद मैडम।

0: नमस्कार, हम हेलो हिसार से बात कर रहे हैं, आप कौन?
1: जय बजरंग रेडी को सोता संग बस स्टैंड बंडा विलेज से लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहे। दीदी चाय पी लो।
0: अरे इस वक्त तो चाय का टाइम नहीं है, नहीं तो जरूर हम, और इतनी दूर से चाय कैसे पियेंगे।
1: आप आए एक बार, आपका स्वागत है।
0: चलिए, आपने आमंत्रित किया ये बड़ी बात है। और बता दीजिए क्या हाल चाल है आपके।
1: हाँ
0: हाल चाल क्या है, काम कैसा चल रहा है आपका?
1: अच्छा चल रहा है, गर्मी बहुत हो रही है
0: जी। और गर्मी में चाय पिलाते हैं आप, है ना?
1: हाँ गर्मी में बिकती भी है चाय,
0: ज्यादा बिकती है।
1: हाँ गर्मी में भी बिकती है और ठंडा में बस सारे में थोड़ी कम रहती
0: है। असल में चाय सदाबहार है भारत में, है ना, इसलिए। हाँ आपके आसपास आवाज आ रही है बहुत।
1: हाँ ये बस स्टैंड है इसलिए आती है आवाज।
0: अच्छा अच्छा चलिए बता दीजिए कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं आप।
1: आई राजा हिंदुस्तानी का सुनवा दी, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी करता देश का।
0: जी जरूर भेज रहे हैं ये गीत आपकी फरमाइश पर, और आप सुनिए और ऐसे ही करते रहिए फोन।
1: ठीक है दीदी, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: जोकर।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है हेलो हिसार में आपका। नाम जान सकते हैं? नाम बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं?
1: शेख जफर हसन, क्वाट जिला और रोहतास, बिहार।
0: बिहार से बात कर रहे हैं, और क्या करते हैं वहाँ पे?
1: खेती गृहस्थी है अपना।
0: अच्छा अच्छा तो अक्सर फोन आते रहते हैं यहाँ पे आपके, है ना?
1: जी जी, तो ऐसा है कि तो अब तो आपका जून में धान का बीज छिड़का जाएगा, अब जो है तो कट चुका है
0: जी।
1: हाँ, क्योंकि नहर का इलाका है और यहाँ तो पानी का दिक्कत है नहीं। 15 दिन को आप तो डैम से पानी छूट जाएगा, इंद्रपुरी बराज डैम है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वहाँ से छूट 4 जिला कवर करता है।
0: अच्छा,
1: रोहतास, आपको कैमूर, बक्सर, भोजपुर जो पहले शाहबाद था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: शाहबाद से कट के रोहतास बना, आरा से उनका शहर का टाउन का नाम है आरा। बक्सर उस पार 1 किलोमीटर आपको उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है
0: जी जी।
1: और कैमूर के बाद उधर आता है हमारे झारखंड है।
0: जी जी जी
1: जी,
0: धन्यवाद जानकारी के लिए।
1: अच्छा, आपका नाम?
0: मेरा नाम ऋतु कौशिक है, और गीत बता दीजिए कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: क्या मैडम, कितना अच्छा, आप कितना अच्छा बोल रही हैं, कितनी साफ आप आवाज है, तलफुज है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
1: जी जी, बहुत अच्छा। फिल्म का नाम है
0: जी
1: आपको अब्दुल्ला, इसे मोहम्मद रफी गाए थे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साथ,

0: हेलो
1: जी, स्वागत है हेलो हिसार में। नाम बता दीजिए। नमस्कार
0: रितु कौशिक मैडम जी, नमस्कार, कैसे हो?
1: जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। नाम बताइए।
0: और हमारा आकाशवाणी परिवार भी कैसा है?
1: बिल्कुल बढ़िया है।
0: गांव कोट जिला भिवानी से किरण कुमार चारण बोल रहा हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल किरण कुमार जी, आप तो पुराने श्रोता हैं और कॉल आती रहती है आपकी। अभी बहुत दिन हुए आपसे बात हुए।
0: हाँ जी मैडम जी, गैप देना चाहिए तो हमारे नए श्रोता भी जुड़ सके। हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए,
0: जी
1: काम काज सब बढ़िया चल रहा है?
0: हाँ जी, ठीक चल रहा है।
1: कौन सा गीत सुनेंगे आज?
0: मेरे को सुनना है रंग फिल्म का
1: कौन सा गाना?
0: कोई भी गाना सुनवा दो, सभी
1: कोई भी गीत।
0: गाने अच्छे हैं।
1: जी, ठीक है किरण कुमार जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। जुड़े रहिएगा यूं ही आकाशवाणी हिसार से। धन्यवाद कॉल के लिए।
0: श्रोता सभी को एक बात कहना चाहता हूँ मैं,
1: जी।
0: जैसे हमारे जो नए श्रोताओं को भी मौका दे बात करने का, सभी को खुशी मिले, फिर
1: जी
0: हमें भी पता लगे कौन कहाँ से बात कर रहा है। दूर दूर तक के श्रोताओं के कॉल आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है नए श्रोता से जुड़ के।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी।
0: जी, तो ये हमारे पुराने श्रोता हैं, ये बार बार में कॉल लगाते हैं।
1: जी, चलिए ठीक है किरण जी, भेजें आपकी पसंद
0: धन्यवाद।
1: का गीत।

0: आज के हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पवन कुमार, तकनीकी सहयोग रहा केवल कृष्ण जी का। इसी तरह आपके मनपसंद गीतों की बहार लेकर हम आते रहेंगे। प्रोग्राम हेलो हिसार में आप सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

0: आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
1: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की। ये आवाज है अनेकता में एकता की।
2: मिले सुर मेरा तुम्हारा।
0: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
3: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range.
0: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी।
4: कानूनी मदद और सलाह दिलाते, पहले लो हमें सही राह दिखाते।
5: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
6: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार, एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन

0: आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्लाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार जिनका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले एक नजर हमारे केंद्र से आज शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। साय 6:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम भक्ति संगीत का समय रहेगा 6:20 पर और 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन, जिसका विषय रहेगा शांति सुकून की तलाश कैसे करें। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे

आज रात 8 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 8:45 पर, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, और रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे तक आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। रात 10 बजे आज आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम, और राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 11 बजे, और 11:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आइए श्रोताओं, अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 5:53 पर हमारे केंद्र की प्रातःकालीन प्रसारण सभा शुरू होगी। कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे प्रातः 7:10 पर, और 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्ते हिसार का समय रहेगा प्रातः 10 बजे, और कल सायं 5 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम एक कलाकार भक्ति संगीत सायं 6:20 पर, और कल सायं 6:30 पर कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल सायं 7 बजे कृषि पर आधारित कार्यक्रम खेती किसाना सेति प्रसारित किया जाएगा, और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माहरे गांव, और कल रात्रि 8 बजे कार्यक्रम महफिल के अंतर्गत आप सुन सकेंगे गजलें, और कल रात 10 बजे आप सुनेंगे आज प्रसारित किए गए कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रमों की रूपरेखा FM एंड 102.3 MHz पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। इस वक्त शाम के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिनका रिले किया जाएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर अध्ययन केंद्र और चेयर स्थापित करने की घोषणा की। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना के गांव हरनामपुरा में करीब 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव मानकौल में करोड़ों रुपयों के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिसार केंद्र द्वारा संगीत कार्यक्रम एवं मैराथन का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने हरियाणा विज्ञान रत्न और हरियाणा युवा

0: विज्ञान रत्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर अध्ययन केंद्र व चेयर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं आज अंबाला के शहजादपुर में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत आयोजित महाराणा प्रताप जयंती के राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहजादपुर के बड़ागढ़ में स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय का नाम बदलकर महारानी पद्मावती राजकीय महाविद्यालय किया जाएगा।
1: साथियों, आज मैं इसकी घोषणा करता हूं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र खोल करके वहां पर महाराणा प्रताप के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी। साथियों, अभी मांग पत्र में एक बात और भी कही गई है कि राजकीय महाविद्यालय बड़ागढ़ शहजादपुर का नाम भी रानी पद्मावती राजकीय महिला महाविद्यालय बड़ागढ़ शहजादपुर रखा जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इस महिला राजकीय महिला विद्यालय का नाम महारानी पद्मावती राजकीय महाविद्यालय के नाम से वो किया जाएगा।
0: उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए, राजपूत छात्रावास के निर्माण कार्य के लिए 31 लाख रुपए देने तथा शहजादपुर के कच्चे नाले को पक्का करवाए जाने की भी घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की नवीकृत प्रतिमा का अनावरण भी किया। समारोह में मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धा थे जिनका नाम लेते ही रोम रोम में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है। इनका नाम सुनते ही हृदय गर्व से और आंखें श्रद्धा से भर जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जब तक स्वाभिमान जीवित है तब तक हमारी आत्मा जीवित है। देश की सभ्यता व संस्कृति पर कोई आंच न आने देने उनके सिद्धांत आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज नरवाना उपमंडल के गांव हरनापुरा में करीब 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा,
2: गाँव के सरपंच और पंचायत ने यहाँ पर 11 लाख रुपए की लागत से HRDF के बजट से एक बहुत ही सुंदर गली जो दादाखेड़ा के लिए रास्ता हरनामपुरा में नहीं था, आज उसका उद्घाटन करने का हमने काम किया। और तो महिलाओं की मांग है, हमारे पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो मेरे अधिकारियों से भी बात की है और जो इनकी माइनर है वहाँ पर अभी एक ट्यूबवेल कनेक्शन करा के इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर इनको पानी देने का हम काम करेंगे, ऐसा मैं आपके बीच विश्वास देता हूँ। और लगभग 18 लाख रुपए की लागत से इन्होंने एक दादाखेड़ा कमेटी ने और महिलाओं ने यहाँ पर एक शेड की मांग की है, उसको भी मैं आज घोषित करके जा रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर उसको भी बनवाने का काम करें।
0: ईंधन की कीमतों को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बेवजह दुष्प्रचार करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है।
2: कांग्रेस के लोगों का बेवजह दुष्प्रचार करना आदत है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां और हालात है पूरी दुनिया का, जिस खाड़ी देशों के युद्ध के कारण उसके अनुसार देश की सरकार को निर्णय लेना पड़ रहा है। किसी को ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले 12 रुपए डीजल पर 10 रुपए पेट्रोल पर टैक्स लगाने का भी काम किया है, लोगों को युद्ध के दौरान भी हमने राहत देने का काम किया, आगे भी देने का काम।
0: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ संदेश का समर्थन करते हुए आमजन से सामूहिक यातायात के साधनों जैसे मेट्रो बस और रेल का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत और सामूहिक संसाधनों का उपयोग देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्सहैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज पलवल के गांव मानकौल में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें करीब 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित भगवान परशुराम भवन, 85 लाख रुपए की लागत से बनाए गए विभिन्न रास्तों, 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित विलेज नॉलेज सेंटर तथा करीब 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित बघेल धर्मशाला शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भगवान परशुराम को नमन करते हुए कहा,
3: एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपने समय में कमजोरों के लिए, निर्धनों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा शस्त्र उठाए। उन्होंने शस्त्र उठाया अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ।
0: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गांव मानकौल में इन विकास कार्यों से गांव की आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी तथा सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों को नया विस्तार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि गांववासियों की अन्य मांगे भी पूरी की जाएंगी।
3: कुछ मार्केटिंग पीडब्ल्यूडी की है, कुछ पब्लिक हेल्थ की है, कुछ बिजली की है, तो तमाम डिपार्टमेंट से जल्दी उनको कराएंगे। जो हरियाणा सरकार लेवल की उनसे कराएंगे और जो मेरे स्तर पर हो सकती है वो करेंगे। उन्होंने पहले भी उनको करोड़ों रुपए गांव के विकास के लिए दिए हैं, अब भी उनको करोड़ों रुपए विकास के लिए, गांव के विकास के लिए हम और देंगे, ये मैंने उनको भरोसा दिलाया है।
0: उन्होंने गांव के विकास के लिए सांसद निधि कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिसार केंद्र द्वारा संगीत कार्यक्रम व मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष बहुत ही गौरवपूर्ण रहे हैं। एक समय में आकाशवाणी ही हमारे पास सूचना, जानकारियों व मनोरंजन का माध्यम था। बदलते परिवेश में आज भी आकाशवाणी उतनी ही प्रासंगिक है।
4: आकाशवाणी के आज 90 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं आकाशवाणी को इससे जुड़े हुए सभी जो संसाधन करने का काम करती है, इसके लिए तुमको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आकाशवाणी हमारे पास चाहे वो सूचना का माध्यम होता था जिससे हम समाचार सुनते थे, चाहे एंटरटेनमेंट का ये गाने सुनने की बात हो, चाहे ये तमाम चीजें एक ही केवल और केवल एक माध्यम हमारे पास होता था कि आकाशवाणी रेडियो से हम जो सुनते थे। और आज तमाम माध्यम प्रधानमंत्री जी की जब मन की बात सुनते हैं तो वो भी आकाशवाणी से हम सुनने का काम करते हैं।
0: कैबिनेट मंत्री ने मैराथन को भी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2026 के लिए घोषित इन पुरस्कारों के तहत हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार में चयनित वैज्ञानिक को 5 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। ये पुरस्कार उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के लिए है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसी प्रकार हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार में 40 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को 1 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। ये पुरस्कार युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हरियाणा में चल रही जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं आवास गणना के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक कर इस राष्ट्रीय कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की तैयारियों का आकलन किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर अध्ययन केंद्र और चेयर स्थापित करने की घोषणा की। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना के गांव हरनापुरा में करीब 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पलवल के गांव मानकौल में करोड़ों रुपयों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार जिनका रिले आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन।

अहिंसा परमो धर्मः, धर्मः हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धामः, सर्वभूतानां हितं तथाश्च। घराहन सुनने वाली सभी बहनों को आपकी रेडियो सखी मधु शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, ये माना जाता है कि अहिंसा परम धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जायज है और अहिंसा परम आश्रय भी है जो कि सभी प्राणियों के हित के लिए है। हम बात कर रहे हैं अहिंसक होने की, अहिंसक खुद के प्रति, अहिंसक अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और समस्त प्राणियों के प्रति। जितने भी जड़ प्राणी हैं और चलायमान प्राणी पृथ्वी पर हैं, सबके लिए मन में एक ऐसा भाव रखना जिसमें कहीं भी क्रोध का स्थान ना हो। और जब अहिंसा की बात आती है तो गांधी जी को याद करना लाजमी है, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा के दम पर ही आजादी की ये जो हमें गिफ्ट दिया है, जो आजादी, जिस आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, उसमें अहिंसा का बहुत बड़ा स्थान है। क्योंकि वो मानते हैं इस बात को कि हम अपनी बात को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। आगामी हफ्ते में 21 मई का जो दिन है वो आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में 1991 के बाद मनाया जाने लगा। बहनों, आतंक जहां है वहां सत्य नहीं है, जहां आतंक है वहां युद्ध के गुंजाइश है, वहां भय है, वहां खौफ है, वहां विनाश है। और इन सब का एकमात्र उपाय, एकमात्र समाधान शांति है। अगर हम शांत हैं तो हम जो निर्णय लेंगे वो शांति से भरा होगा और उस निर्णय में सबके विकास की संभावनाएं हैं। जब जब हम बात करते हैं शांति की, तब तब हमें अपने मन के भीतर एक ऐसे भाव बनाने होंगे जो किसी के लिए भी नुकसानदायक ना हो, किसी के लिए भी हिंसक ना हो। हिंसा का जन्म क्रोध से होता है और क्रोध वहां होता है जहां आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य पिशाचवेति का हो जाता है और उस पिशाचवेति को छोड़ने के लिए आपको जरूरी है शांत रहना। सबसे पहले मानसिक शांति जरूरी है, क्योंकि आपकी मानसिक शांति ही आपके आसपास शांति का प्रसार करेगी। फिर भीड़ भरे माहौल में, शोर भरे माहौल में भी हम अपने आप को कह सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि मुस्कुराओ क्योंकि आप शांत हो, मुस्कुराओ क्योंकि आप एक शांत दिमाग के मालिक हो। और अगर हम शांत हैं तो हमारे आसपास जो कुछ होगा वो विकास के लिए होगा। गांधी जी सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध मानते हैं। वो कहते हैं कि सत्य सर्वोच्च साध्य है और अहिंसा उसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर पूर्ण सत्य की खोज के लिए निकला है तो उसे अहिंसक होना पड़ेगा। गांधी जी सत्य को, अहिंसा को, शांति को वीरों का आभूषण मानते हैं। इसका मतलब अगर आप किसी की बात का जवाब उसी के तरीके से नहीं दे रहे हो तो आप कायर या कमजोर नहीं हो। सबसे मजबूत और सबसे बहादुर लोगों का हथियार है अहिंसक होना, जिसमें चोट सहने का साहस भी है और विरोधी के प्रति आपके मन में प्रेम भी पल रहा होता है। आप उसकी जगह अपने आप को खड़े करके ये देख सकते हो कि अगर मैं इसके स्थान पर होता तो क्या निर्णय लेता और मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है। एक शांत दिमाग ही ऐसा निर्णय लेने के काबिल होता है। सक्रिय प्रेम की परिभाषा सिर्फ अहिंसा से दी जा सकती है, जिसमें ये माना जाता है कि जब आप किसी को प्रेम करते हो तो आप उसको नुकसान करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। चाहे वो पेड़ है, चाहे प्रकृति है, चाहे बहती नदी की धारा है, चाहे आपके सामने बैठा कोई प्राणी है, चाहे मनुष्य रूपी कोई प्राणी है, आप उसके नुकसान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। आप सकारात्मक सोचोगे कि दूसरों की भलाई हो और शत्रु के हृदय में भी प्रेम के माध्यम से आप परिवर्तन लाने की बात करोगे। गांधी जी कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जिस व्यक्ति में जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को संभाले, उसमें शारीरिक ऐसे कुछ बदलाव उसके मन को

समझा कर किए जाएं, जिससे वो व्यक्ति खुद भी आपके रास्ते पर चल पड़े और आप स्वयं इतने मजबूत हो कि आप उसके सिर्फ अच्छाइयों को देखें, बुराइयों को नहीं। साध्य और साधन की पवित्रता के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी काम हम शुरू करते हैं वो बहुत ही छोटे स्टेप से शुरू होता है, चाहे वो पूरे साल के लिए किया जाने वाला कोई संकल्प है, चाहे अपने कुछ आदतें बदलने का कोई कार्रवाई है, या आप अपने स्वभाव पर काम कर रहे हैं, अपनी स्टडी पर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से ही सफलता हासिल की जा सकती है। और जब हम सत्य के मार्ग पर चलकर अहिंसक रहकर किसी काम के लिए अपने विजन को क्लियर कर आगे चलते हैं तो सफलता हमारे पास आएगी, ये निश्चित है। लेकिन उससे पहले जो साधना है, उस साधना के लिए हमें अपने शरीर को और अपने मानस को तैयार करना होगा, क्योंकि ये बात सर्वसिद्ध है कि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने आसपास कोई बदलाव नहीं ला सकते। तभी तो उन्होंने एक इतना प्यारा सा गीत बनाया कि वैष्णव जन तोते ने कहिए पीर पराई जाने जो। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आजादी की।
1: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की। ये आवाज है अनेकता में एकता की।
2: मिले सुर मेरा तुम्हारा।
0: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
3: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range.
0: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी।
4: बहनों, हम उस देश के वासी हैं जहां पर सबको साथ लेकर चलने की परंपरा है, जहां हम शांति, करुणा और मानवता की बात करते हैं। और जब जब हम ये देखते हैं कि कोई हिंसक कार्रवाई हो रही है, तब हम ये देखते हैं कि पूरा समाज साथ खड़ा होता है, साथ चलता है हमारे, और तब ये देखता है कि शांति की स्थापना कैसे करनी है। चाहे उरी का हमला हो, चाहे पुलवामा का हमला हो, भारत हर एक स्थान पर घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है, लेकिन शांति में विश्वास रखता है। पहले कुछ करना नहीं और फिर डरना नहीं, इस नारे पर चलकर ही हम शांति को प्राथमिकता देते हैं। बहनों, चाहे घर की कहानी हो, चाहे देश की रक्षा की कहानी हो।

का प्रयोग करने की। शांति काल के समय बहनों हमारी सारी सेनाएं युद्ध की तैयारी में लगी रहती हैं, सीमाओं की चौकसी करती हैं कि किसी भी तरीके से कहीं भी कोई असुरक्षित माहौल ना बने, आतंकी माहौल ना बने, और उस आतंक को दूर करने में लगा हुआ है हमारा पूरा देश। लेकिन उस बीच कुछ ऐसे रूमर्स जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं, कुछ ऐसी बातें जो लोगों को भड़काने वाली होती हैं, ऐसी बातों के चलते हम पूर्ण शांति की स्थापना नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए कोई मिशन चलाने, कोई ऐसे बात सोचने, कोई ऐसा आयोजन करना जहां पर हम एक लेवल पर, एक स्तर पर सब सोचें, क्योंकि अब अगर हम इस मुद्दे पर चुप रह जाएंगे तो एक ऐसी गहरी उदास खामोशी छा जाएगी जिसके बाद पछतावे के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब जब युद्ध हुए हैं तब तब विजेता लाशों के ढेर पर बने हैं, और हमें वो विजय नहीं चाहिए जिसमें मानवता का नुकसान हो, मानवता का हनन हो। इसलिए जरूरी है कि हम पहले से ही अपनी बातों से, अपने कर्मों से किसी भी तरह का अशांत माहौल ना बनाएं। और उस शांति को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, सबसे बड़ी जो चीज है वो है नियंत्रण। हमें नियंत्रण करना होगा अपने विचारों पर, अपने भावों पर, अपनी बातों पर और अपने कर्मों पर, तभी हम शांति की स्थापना के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले युवा वर्ग जिस आपाधापी में, जिस भागादौड़ी में चल रहा है, उस भागादौड़ी से बचना होगा। शांत रहकर दिन के 10 मिनट अपने आप को देने होंगे, देखना होगा कि जिस दौड़ में हम जा रहे हैं वो दौड़ हमें कहां लेकर जा रही है, उस दौड़ में शामिल होने के बाद हमारे पास प्राप्य क्या है, उसका परिणाम क्या है, इन बातों को सोचकर हमें आगे चलना होगा। और सबसे बड़ी बात, सबको साथ लेकर चलना होगा। जब जब हम ईर्ष्या के भाव को अपने भीतर जन्म देंगे, तब तब क्रोध आएगा, असुरक्षा का माहौल आएगा और तब तब आतंक फैलेगा। इस आतंक को हमें रोकना है। अपने भीतर चलते हुए आतंक को सकारात्मक परिणाम लाने के लिए हमें शांत करना होगा, उसे जड़ से खत्म करना होगा। बहनों, जैसे एक विशाल पेड़ को काटने के लिए उसे जड़ से उसे खत्म करना होता है, ऊपर से अगर टहनियां काट देते हैं तो जैसे ही उसे सम परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे ही उसे पानी सूरज मिलता है, वैसे ही वो फिर से फूटने लगती हैं। इसी तरह से आतंक को अगर हमने जड़ से खत्म नहीं किया, तब तक शांति की स्थापना के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उसके लिए जरूरी है ईर्ष्या से बचे, दूसरों से तुलना करने से बचे। युवा वर्ग को सिखाएं कि मेहनत से, सीधे रास्ते से आपके पास जो आपको हासिल हो रहा है उससे ही आपको संतोष करना सीखना होगा, और अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। सकारात्मक रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलकर बिना किसी से ईर्ष्या करे, अपने काम से काम रख के, अपने बारे में सोचकर, रोज अपने आप से प्रतिस्पर्धा करकर हमें आगे बढ़ना है, न कि हमें किसी और को देखकर ईर्ष्या का भाव रखकर और उसे पीछे धकेल कर अपने को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। क्योंकि जब जब आप ऐसा कार्य करोगे तो हमें उसके परिणाम स्वतः ही प्राप्त होते चले जाएंगे। अगर हम किसी को धकेल रहे हैं पीछे की तरफ, तो कोई और भी तैयार खड़ा है हमें पीछे धकेलने के लिए, क्योंकि लाइन लगी पड़ी है और उस लाइन में हम गिनती में सिर्फ एक हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अपने श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए किसी और को हीन दिखाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप श्रेष्ठ अपने आप चलते रहोगे अगर आप मन से श्रेष्ठ हो, अगर आप विचारों से श्रेष्ठ हो, अगर आप महान बनने के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि आपके काम आपको महान बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज तक के जितने भी महान व्यक्तियों की अगर हम व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो कोई भी व्यक्ति जन्म से उसके लिए ये भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि ये महान बनेगा। धीरे धीरे उनके चरित्र ने, उनके चारित्रिक विशेषताओं ने, उनके गुणों ने उन्हें महान बनाया है। व्यक्ति विशेष में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो उसे महान बनाए। उसका काम करने का तरीका, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसके गुण ही उसे महान बनाते हैं। और जब जब हम शांति की बात करते हैं तो शांति के पक्षधर सभी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहेगा कि वो सारा दिन शोर शराबे में रहे।

0: सारा दिन उसके मन को सुकून प्राप्त ना हो, सारा दिन जो उसने काम किए हैं उसका फल उसे प्राप्त ना हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। छोटे बच्चे को भी अपने परिणाम चाहिए, उसे भी एक शांत माहौल चाहिए, और जब जब आप आगे बढ़ने की सोचते हो तो एक शांत दिमाग ही सही निर्णय ले सकता है। ये बात सर्वसिद्ध है, सर्वमान्य है। जब जब हम ये बात सोचते हैं कि हमें सबको अपने कामों का फायदा देना है, हमें ये नहीं देखना कि सिर्फ मैं अपने आप को अपने आप तक सीमित रखूं, अगर हमने ये सोचा तो हम स्वार्थी हो जाएंगे, और बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से जब हम कोई काम करने लगेंगे तो उस काम की महक चारों तरफ फैलेगी, निश्चित रूप से फैलेगी। क्योंकि पेड़ अगर अपना फल खुद खाने लग जाए, नदी अपना पानी खुद पीने लग जाए, तो बाकी किसी को कुछ भी मिले इस बात की संभावना नगण्य है। जब जब फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी, ये सिद्ध है, और उसकी महक सांसों के दौर से आपके भीतर तक पहुंचेगी, और जैसे ही आपकी इंद्रियां काम करेंगी उस खुशबू को पहचान कर आपका दिमाग उस भाव को पकड़ेगा कि हाँ, ये महक फूलों से आ रही है, क्योंकि फूलों में देने का भाव है, लेने का नहीं। अगर हम इस भाव से चलेंगे तो पूरे विश्व में हम एक शांति माहौल बना सकते हैं, एक शांत माहौल बना सकते हैं, जो हमारे लिए और औरों के लिए, सबके लिए सुकून भरा होगा, चैन भरा होगा। फूलों की तरह जीना सीखें, इस गीत की तरह।
1: सदाबहार वीडियोस देखने के लिए

बहनों, जब जब हम इस बारे में सोचते हैं कि आतंक को कैसे दूर किया जाए और कैसे शांति की स्थापना की जाए, तब तब हमें जरूरी है कि हम कुछ परिवर्तन करें, कुछ ऐसे परिवर्तन जो हमेशा हमेशा के लिए हमारी आदत बन जाए, हमारे चरित्र में शामिल हो जाए और उसके बाद उनसे जो परिणाम आए वो हमेशा सकारात्मक और श्रेष्ठ आए। उसके लिए सबसे पहले हम खुद भी और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि झूठ से एक बड़ा परहेज रखना है। किसी भी मामले में, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना है। शास्त्रों में भी ये बात कही गई है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्यम च अनन्तरम ब्रूयात एते धर्म सनातन है। अगर हम सच बोल रहे हैं तो उस सच को हमें कभी भी बदलने की जरूरत नहीं है, कोई तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है या कोई अलग से कोई नई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यदि हम आज बोल रहे हैं तो भी वही स्टेटमेंट होगी और अगर 10 दिन बाद बोलेंगे तो भी वही स्टेटमेंट होगी। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उसमें हमें 100 तरह के बदलाव लाने के बारे में सोचना होगा और ये सोचना होगा कि पहले वाले झूठ में क्या बोला गया था जो मैं अब बोलूं सेम बोलूं। अगर सच है तो वो हमेशा के लिए सच ही है, इससे परहेज रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक ऐसा सच जो किसी को नुकसान दे, किसी की एकदम से किसी के स्वास्थ्य पर असर डाले, ऐसे सच से भी थोड़ा सा बचना होगा, ये भी शास्त्रों में कहा गया है। उसके बाद बहनों, जब जब हम कोई बात देखते हैं अपने समाज में, कोई ऐसी चीजें जो गलत हैं, जो नहीं होनी चाहिए, तो हमारे भीतर एक ऐसा साहस अवश्य होना चाहिए जो सच को सच और गलत को गलत कहने के लिए तैयार रहे। सही को सही और गलत को गलत कहना हमें आना चाहिए। किसी भी तरह की असमानता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात के लिए हम ये बात बताएं सबको कि हम किसी भी तरह की असमानता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना व्यवहार सौम्य रखें, मानवता के बारे में सोचें, अपने भावों को शुद्ध रखें, हमेशा सहयोग की भावना रखें। जितना हो सके, जैसा हो सके, वैसा हम दूसरों का सहयोग करें, इस भाव के साथ हम काम करें, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं। आर्थिक सहयोग हमेशा हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन कई बार आपके द्वारा बोले गए कुछ बोल दूसरे को एक बड़ा सहारा दे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी तरह से हम किसी का सहयोग कर सकते हैं, हम हर भरसक प्रयास करें कि हम सामने वाले का सहयोग करें। और मनसा वाचा कर्मणा शुद्धिकरण ये जरूर करें। अपने मन को पवित्र रखें, अपने मन में किसी भी तरह का छल कपट ना रखें, किसी के लिए कोई दुर्भाव ना रखें, अपनी बोली को, अपनी वाणी को पवित्र रखें, शुद्ध रखें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। अगर ये

में नियम हमने बना लिए, मन की शुद्धता, वचनों की शुद्धता और कर्मों की शुद्धता, तो हमारे हाथ से किसी चींटी का भी नुकसान नहीं होगा। हम सत्य का पालन करेंगे, हम प्राणियों के लिए सद्भावना को अपने दिमाग में रखेंगे और कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, तो शांति का और रामराज की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। आज से ही हम ये प्रण लें कि हम अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करें और सत्य के रास्ते पर चलकर, शांति के रास्ते पर चलकर अपने आप को सुकून भरे माहौल में रखें। उम्मीद है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, और अगर है तो आप अपने पत्र में हमें जवाब देंगे, और उन पत्रों को हमारे तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम आकाशवाणी, कार्यक्रम घर आंगन, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हिसार, पिन 125001। और अब समय हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता कि हम आपके साथ बात करें, आप दीजिए हमें आपकी रेडियो सखी मधु शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम घर आंगन FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे आजाद भाई के साथ कार्यक्रम महरी पसंद।

मालविका शर्मा ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का मंच संचालन श्री संपूर्ण सिंह बागड़ी और भूमिका शर्मा ने किया। पेश है आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्ष और आकाशवाणी रोहतक की 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम।

एक वो लोग विशाल व्यक्ति पुत्र यहाँ प्रवेश हुआ है इस सदन में माननीय मंत्री जी, हमारा एक पद्मश्री ऐसे वो पुराने जिन्होंने हासिल किया है, तो आज वो आए हमारे बोर्ड पर कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन आपका। और अब मैं बोर्ड करूंगा हमारे दोस्त हेड सुनील गोमती से, प्लीज आप मंच पर आए संजय माली जी, और नितिन मलिक जी से, और रामधन चहल जी से, सुमन मंत्री जी से, सुनीता हुड्डा जी से, कृपया आप आए अपने कर्तव्यों से माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, और महावीर गुरु जी की संत वाणी इस बीच में अगर हो

इन सर्वों द्वारा हमारे सभी कलाकारों सामूहिक भजन के साथ तो मैं दोस्तों में रोशन कामवाल हमारे हरियाणा की बहुत ही सुंदर आवाज तो वो भजन के साथ अपनी सभी शादी का

的第一步，他成功。

हमारे हाथों डाल हो ना स्वर्ग मेरे तब हो ना स्वर्ग में चंगाल हो भगनी अंदरी हो मां संगत रोजी का चंगाल हो और घर में पुलिस सिपाही ना कौन हो संतरी हो ना किसे का गुलाम कोई ना राजा को है मंत्री हो ग्रहों का डरावा ना तो बहकाती ही संतरी हो जहाँ जमा है सुबह सब की

0: हमारे जो अधिकारी भी रहे और आकाशवाणी का ये गौरव है कि वो अधिकारी के तौर पर भी काम किए और आज टॉप रेट आर्टिस्ट में उनका नाम आता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे निदेशक रहे श्रीमान कैलाश वर्मा जी की। अगली प्रस्तुति उनकी है, प्रबल ध्वनि के साथ मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। कैलाश वर्मा जी के कुशल नेतृत्व में आकाशवाणी निगम की एक नई राह खोजी, नई पहचान बढ़ाई। वही कई तरह के गीतों की नोटिंग भी आपने अपने सहकारी काम में, मलिक साहब ने जो काम शुरुआत किया था उसके बाद उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। तीन तीन नेशनल अवार्ड आपके समय में आकाशवाणी को मिले, नेशनल अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो उन अवार्ड की भी जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर थी और आपने वो भी लगाया।
1: हमारे बीच मौजूद आकाशवाणी परिवार के हर कड़ी माननीय डॉक्टर कैलाश वर्मा जी और साथ में

0: University, सावन के महीने का आप सभी को सुन के माध्यम से, लोकधुन के माध्यम से, हरियाणी बोली के माध्यम से आप सभी को परिचय कराया। अब हमारे सामने श्री महावीर गोटू जी अपने वक्तव्य और अपनी प्रस्तुति के साथ।
1: मैं बस एक आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी होका नहीं पिया, बीड़ी नहीं पी, दारू नहीं पी, दर्द निश्चय रखा, चरित्रवान है, इसलिए जो नई युवा पीढ़ी है वो इन बातों को अपनाएगी। एक इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे हरियाणा की जो है ना प्रसिद्ध खासियत है, और खासकर जो बुजुर्ग है ये बैठे हुए, धर्मपाल जी बैठे हुए, चल सब बुजुर्ग नहीं हो जाती, जो बुढ़े आपस में

मैंने जिंदगी में कभी होका नहीं पिया, बीड़ी नहीं पी, दारू नहीं पी, दृढ़ निश्चय रखा, चरित्रवान है, इसलिए जो नई युवा पीढ़ी है वो इन बातों को अपनाएगी। एक इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे हरियाणा की जो है ना प्रसिद्ध खासियत है, और खासकर जो बुजुर्ग है ये बैठे हुए धर्मपाल जी बैठे हुए, चल सतो बुजुर्ग नहीं हो जाती, जो बुढ़े आपस में

काम मैं बोला था उठ गया बोला करती नहीं पहले पतला बुढ़ा की काट क्या मैं बोला था उनके पूछा या वो तो मैं बोला नहीं सोच लिए तरगाम की छोरी फेंट गई मैं बोला छोरी टिकट मैं भी नहीं लेता तू सोच लिए तरगाम की छोरी गलत रे जी जबिया आइए तो जब माता पार्वती को नाथ ने समझा दिया बैठे शंकर बाबा जाकर उनके साथ विवाह की बात कर और कैसे विवाह की बात होती है समझाते और वो तो वैसे जो शिव लहरी बंगला तो दोनों का वार्ता है पंडित जी का और शिव जी का बहन उसमें अकेले शंकर भगवान माता पार्वती को समझा

शरण ये तो पड़ता है नहीं पूपा गाजी कोयल से हर तरफ बड़ घास नहीं करूं मैं तुम्हें

लगा समाधि तुया पदली पतला लगा

ये कला आप ऐसे ही निकलते हुए ऐसे आप उसको बांटते हुए देश हो विदेश हो कहीं भी हो, और हमें गर्व है आप पर कि आप हरियाणवी संस्कृति के संभालक हैं। चले भजन बोलते हैं थोड़ा सा। और एक वक्त था जब भजन जो हमारे हरियाणवी बोली में हरियाणवी गायकी में आया तो अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज उसी की पहचान ने उसको एक अलग से मुकाम दिया, उसको अलग से स्थान दिया। और उस के कलाकार बहुत ऐसे प्रख्यात हुए हैं, चाहे माता सुखबीर सिंह जी की बात करें, बालाराम भैया जी की बात करें, बाबराम भैया जी की बात करें, हमारे आकाशवाणी के ऐसी परंपरा में हमारे कलाकार हैं रणवीर सिंह बरवा सिंह बरवा रंजू में गाते हैं, बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, बहुत सिद्ध कलाकार हैं वो। तो आज हम जगन्नाथ जी की अपनी एक रचना

सब के श्यामी।

Antônia. Yeah!

सोचे अलग अटे फिर जान के पीछे खिचे जा सत्तम नाम नाम ने पुहिए पछे कर्म कांड में दस जा अब कर्म के बंधन में मानस कुछ त्याग करवा के फसी।

0: रघुवीर जी आपका और एक ऐसी आवाज जो आज आकाशवाणी हिसार को गुंजायमान कर रही है। हालांकि आकाशवाणी हिसार से हमारे एडीपी पवन कुमार जी यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तो भाई आजाद सिंह दोहन, जिनकी शुरुआत आकाशवाणी रोहतक से हुई और उसके बाद जब आकाशवाणी हिसार आरंभ हुआ तो वहां अपनी सेवाएं देने के लिए उनका मन हुआ तो वहां चले गए और आज आकाशवाणी हिसार में भाई आजाद अपने आप को बहुत अच्छे प्रस्तोता के रूप में उनकी पहचान है, उनका एक स्थान है, तो आज हमारे बीच में है। तो उनका भी एक अनुभव, उनकी भी एक यात्रा, उनका भी अपना एक संस्मरण हम उनसे चाहेंगे। तो भाई आजाद को हम बड़े सम्मान के साथ मंच पर
1: कार्यक्रम सुनने सहरेबान बढ़िया में आजाद भाई की राम राम। आकाशवाणी के सफर के 90 वर्ष, आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्ष होने पर आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई। मैं 8 मई 1995 को आकाशवाणी के स्थापना दिवस पे आकाशवाणी समारोह देखने के लिए आया था। बात रेडियो की, बात गीत की, बात संगीत की, शिक्षा संस्कृति स्वास्थ्य संस्कार की, हरियाणा आश्रम का नाम है, हरियाणा की संस्कृति में केवल चार नाते आए बहन के लिए, आए भाई के लिए, आई आपकी लुगाई में छोड़कर किसी ने भी देश का आई काकी, आई ताई, आई माँ, आई हुआ। हरियाणा में मैडम बोले थोड़ा खतरनाक मात्रा है, आओ को लुगाई में पहले आओ माधु चकाइए माधु में होता पे गिर के आश करें। एक महिला का पति गुम हो गया, पड़ोस में देकर थाना में गई, बोली खैर दर्जी मेरा पति गुम हो गया। जिसका पति गुम था मिंदरी 7 फुट का लंबा कति गोरा जमा सुतरा छोरा जी 3 दिन रह पाऊंगा एक पनीर प्रदर्शन मूल्य जो थी मेरा खुलासा था कल जिसा बतावे जा तो कोई था बोलिए खुलवा जो सा खुलवा पूरा स्टोर तो सुतरा गया होगी रंजीश फोन नंबर भी कर लिए मेरा फोटो ट्रैफिक का पाओगा परसों 80 के कॉलेज में छोड़ी हम समझान ला रहा था माँ बेटी का रिपोर्ट का चक्कर मना रहा करो आकाशवाणी रोहतक के कार्यक्रम में चैलेंज करके जा रहा हूँ, कोई भी आदमी आपकी लुगाई गलत 5 मिनट बात करता हो या कोई भी लुगाई आपके पति गलत 5 मिनट बात करते हो तो 5 लाख का इनाम मेरे भेजिए। मुला के भाभी जी का फोन 10 सेकंड में काट दिया, मगर 10 सेकंड में गर्मी बात कहेगी बोला के कहेगी मावा ने 80 का अंदर सरफ का पैकेट रंगवा ले गई। ये हमारा आश्रम हरियाणा है, सरकार ने जब मुझे चुटकुला सम्राट का पुरस्कार दिया तो मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन आकाशवाणी के मार्फत माली गुरु के पक्ष में तो चलते हुए मैं चुटकुले सीखे। एक बार पद्मश्री के लिए जोरदार तालियां बजाए, वो गंभीर बात इस हार दशक में बदल जाएगा, गंभीर तक बोलने के जाऊंगा इशार बस अड्डे पर लड़ा होगा पीछे मांगन वाली बोरी में छोड़ा होगा आश्रम में दूंगा, इशार बस अड्डे पर लड़ा होगा और पीछे मांगन वाली बोरी में छोड़ा होगा। एक जमा में ब्याह रहेगा तो कुआरी थी, दूसरा में लाइ तो लाचारी थी। बीर में देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई, बीर में देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई और खाकी वर्दी पेरे थल दर में देख के बूढ़े की आंख पथरा गई, बोरी की आंख में देख के ऊपर तरह लिखा हुआ था और वो न महाभारत गुंफा जो उसके जमाने में बनाई न देखा होता था। बोला मेरी धर्म की जाई बताई पाप कितने लाई, बोरी में होश आया थोड़ा हंसा उठाया अर्जुन बोले मात पिता ने जुलम करी में कूड़े बीच बगाई, मात पिता ने जुलम करे में कूड़े बीच बगाई और नहीं फेंक कर रहा था मेरी फेंकी जब निभाई कुत्ते बिल्ले अर बंदर आते मेरी राम ने जान बचाई। परे थंदर जी बड़ी होगी दो पैरों में कुत्ते बिल्ला तुम बच पाई, दो पैरों में कुत्ते बिल्ला तुम बच पाई, दो पैरों में कुत्ते बिल्ला बेटा बेटी एक समान तभी होगा देश महान। शिक्षा संस्कृति संस्कारों का संगम आकाशवाणी के 90 साल और आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्षों का सफर, मैं तेरे दिल से आकाशवाणी को सलाम करते हुए अपने भाई आजाद जी ने देर होती चले बन भाई हमें राम राम।
2: बहुत ही सुंदर और सकारात्मक अभिव्यक्ति के बाद बहुत प्रकार भाई से आकाशवाणी केवल कार्यक्रम नहीं देता, आकाशवाणी जीवन को वो आकार देता है जिसे आने वाली पीढ़ी समझ जाती है। शुक्र गुजार कर रहे हैं अभी एक सामूहिक प्रस्तुति मालविका देवी और उनकी टीम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां जहां हरियाणवी कार्यक्रम होते हैं वहां वहां ये टीम अपनी प्रस्तुति दर्ज कराती है। आकाशवाणी से जुड़े हुए जोरदार तालियों इस टीम के लिए आकाशवाणी के स्वाणी।

ये सुना भाइयों, आज आपने आकाशवाणी के 90 साल का गौरवशाली सफर और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के संपादित अंश। इसी के साथ ही आज का हमारी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दून ने दी अनुमति सारे बन भैया ने।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान सब आपकी एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यूआर स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
1: बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सब आपके एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यों स्कैम करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी पसंद आजाद भाई के साथ एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने।

साथियों, कोई भी गीत हो, हर गीत का अपना एक अलग महत्व होता है। कभी कोई गीत चेहरे की मुस्कान लेकर आता है तो कभी कोई गीत उदासी लेकर आता है। कभी गीतों के माध्यम से हम पुरानी यादों में चले जाते हैं तो कभी कोई गीत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, इसी खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए गीतों का, आपकी पसंद का और आपके मैसेजेस का एक बहुत ही प्यारा संगम। कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने में सभी साथियों को आपके रेडियो साथी अनिल भल्ला का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अब हम शामिल करेंगे आपके भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेजेस और आपको सुनवाएंगे आपके पसंदीदा गीत। तो बढ़ते हैं मैसेजेस की ओर और देखते हैं हमारे किन श्रोताओं ने फरमाइश हमें भेजी है। तो शुरू करते हैं हम पहले मैसेज से। हमें सबसे पहले मैसेज प्राप्त हुआ है मनाली हिमाचल प्रदेश से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस का। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजा है।

हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती प्रसाद सोमल, बेबी सिया जाधव और जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता ओम सुभाष, चंदन एकनाथ और संगीता जाधव का हमें व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर का मैसेज हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें चरखी दादरी हरियाणा से मैसेज प्राप्त हुआ।

और जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता ओम सुभाष चंदन एकनाथ और संगीता जाधव का हमें व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर का मैसेज हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें चरखी दादरी हरियाणा से मैसेज प्राप्त हुआ।

0: उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार, जी हाँ ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी, मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

0: चाहिए मुझे।
1: गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उधास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उधास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी, नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अंदर। अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, जिनका रिले आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से किया जा रहा था। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम, और अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी रहेगी radiohisar@gmail.com। तो श्रोताओं, शुरू करते हैं सिलसिला आपके ईमेल मैसेज पढ़ने का। हमारे पास सबसे पहले ईमेल आई है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। श्रोता हैं हमारे राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद माथो वर्मा, उमेश और धनेश्वरी वर्मा ने हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह का मैसेज हमें मिला है, और ये हमारे श्रोता रहेंगे। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, और कैथल हरियाणा से मधु नायक ने हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा का मैसेज हमें मिला है, और ये हमारे श्रोता रहेंगे। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मथु सागर और सतना एमपी से मंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने संदेश किया है। दतरंगी फाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का हमें संदेश प्राप्त हुआ है, और इसी के साथ ही हमें ये ईमेल आई है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी की। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, और फिल्म रहेगी जीने की राह।

साथियों आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से कार्यक्रम ई मेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम और मैं हूं आपका साथी अनिल भल्ला। बढ़ते हैं अगले ईमेल की ओर। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हमें ईमेल भेजा है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके सभी परिवार के सदस्यगण हमें ईमेल भेज रहे हैं। इसी के साथ ही हमें ईमेल आई है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। गंजडू द्वारा से हमें संदेश आया है शमसुल, कमर राही, शाहिन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी ने हमें संदेश भेजा है। गांव जाखोद से शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक का संदेश हमें मिला है ईमेल के जरिए। और ये हमारे श्रोता हैं नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल और बेबी सिया जाधव, जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता ओम जाधव, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव का हमें संदेश प्राप्त हुआ है।

मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे और बसंतराव भोजने ने संदेश भेजा है और ये हमारे श्रोता रहेंगे। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद का संदेश हमें मिला है और अनारकली बाजार जगरांग से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक ने ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। और ये हमारे श्रोता हैं छोटे बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद और कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, रबिया मंतशा, आशु अहमद और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें संदेश भेज रहे हैं। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता, खुशबू, खुशदीप का संदेश हमें मिला है ईमेल के जरिए और गांव हीरामाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा ने हमें संदेश भेजा है। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद शोले फिल्म का गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की युगल आवाजों में।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दोस्ती है, जो हर गम में मुस्कान दे जाती है। हमारे श्रोता हैं संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से, सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति आयशा गायकवाड़, दीपांजलि, दीक्षा बाघमारे, शशांक बाघमारे का हमें मैसेज मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव ने मैसेज किया है। राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से हमें संदेश भेज रहे हैं। और गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह ने ईमेल हमें भेजी है। इसी के साथ ही हमें मैसेज आया है, हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल विदर्भ महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर का हमें संदेश मिला है। गांव कल्याणा मलका, जिला बठिंडा, पंजाब से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया और परमिंदर सचनूर और मनिंदर ने हमें ईमेल के जरिए संदेश भेजा है। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी का। हमारे अगले श्रोता रहेंगे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। इसी के साथ ही हमें संदेश मिला है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा का संदेश हमें मिला है ईमेल के जरिए। और ये हमारे श्रोता हैं खड़कपुनिया हिसार से मनदीप सिंह, नसीब, मीनू, बबलू, शगुन, काली, विन्नी, घोलू और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें संदेश भेज रहे हैं। लुधियाना पंजाब से अक्षित और परीक्षित ने ईमेल हमें किया है। आइए सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर खानदान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

साथियों, कुछ मुलाकातें किताबों जैसी होती हैं। हर लफ्ज़ याद रह जाता है। लोग तो बहुत मिलते हैं ज़िंदगी में, पर कोई कोई दिल में उतर जाता है। हमें ईमेल आई है मेन बाज़ार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से। गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर ने हमें ईमेल भेजी है। इसी के साथ ही मुंगिसापुर बाजार रोड से हमें संदेश आया है ईमेल के जरिए। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुब्दा और यश मंसूरी ने हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे श्रोता हैं कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। इसी के साथ ही हमें संदेश भेजा है गंजडू द्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर बिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव ने हमें संदेश भेजा है। और छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश प्रांजलि, सोहम सदानंद, विराज और अंशुमन ओवी का मैसेज हमें मिला है। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और आजिम खान ने हमें संदेश भेजा है ईमेल के जरिए। इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का संदेश हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, और एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी ने ईमेल भेजी है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरव शाइना और मैंडी शर्मा का संदेश हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें संदेश किया है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने हमें ईमेल के जरिए अपना संदेश भेजा है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

साथियों, आपने सुना हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। ये गीत बताता है कि जब इंसान किसी की मोहब्बत, अपनापन या भावनाओं में इतना खो जाता है कि वो अपनी पसंद, अपनी जिद और कभी कभी अपने दर्द तक से समझौता कर लेता है, उस वक्त उसे सही गलत का एहसास कम होता है, क्योंकि दिल सिर्फ उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बढ़ते हैं अगले ईमेल संदेश की ओर। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। और गांव खालिया, जिला सिरसा, हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे जोकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम, डॉक्टर प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी, विजय नारंग, सुरेंद्र खुराना, प्रेमचंद प्रेमी, चांद खान जी और मुर्तजा खान ने संदेश हमें भेजा है। कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक और संदीप मक्कड़ नागपुर महाराष्ट्र से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और सुनीता साहनी का संदेश हमें मिला है। और इसी के साथ ही ये हमारे श्रोता रहेंगे

मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कोसर ने संदेश हमें भेजा है। और श्रोताओं से गुजारिश है कि वो बार बार हमें ईमेल ना करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का संदेश हमें मिला है और ये हमारे श्रोता रहेंगे। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्यान, सुरेंद्र भ्यान, शमशेर, मनोज और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका संदेश हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है, हमारे श्रोता रहेंगे। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर बरसात की रात फिल्म का ये गीत।

साथियों, मुलाकातें भले छोटी हों पर कुछ चेहरे हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। जनकपुरी सहारनपुर से हमें संदेश आया है जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का। इसी के साथ ही हमें अगली ईमेल आई है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से इन्होंने हमें संदेश किया है और ये हमारे श्रोता रहेंगे नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री महेत्री, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, बीड शहर महाराष्ट्र से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, पाकुड़ झारखंड से इनका संदेश हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले श्रोता हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी का संदेश हमें मिला है और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ने हमें मैसेज किया है और ये हमारे श्रोता रहेंगे नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हमें ईमेल भेजी है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। इसी के साथ ही हमें अगली ईमेल प्राप्त हुई है, ये हमारे श्रोता रहेंगे पांढरकवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे और बलहर शहर से सूरज लोंढे, प्राची लोंढे, एकलव्य लोंढे। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर किशोर कुमार की आवाज में ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत।

90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
1: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की।

0: आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
1: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range।
0: ये आवाज है नए भारत की। नब्बे वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी।
2: दोस्तों हमें ईमेल भेजी है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने। इसी के साथ ही हमें एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से ईमेल के जरिए संदेश प्राप्त हुआ है। श्रोता हैं हमारे सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। और हमारे अगले श्रोता हैं जिन्होंने हमें ईमेल के जरिए संदेश भेजा है, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय का संदेश हमें मिला है। और ये संदेश हमें भेजा है मंडी हरजी राम मलोर से नथु राम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्राज, सुरेश शर्मा और इनके सभी परिवार के सदस्यगण। और ये संदेश हमें मिला है, हमारे श्रोता रहेंगे किरण मंडी आदमपुर हिसार हरियाणा से ये हमें संदेश भेज रही हैं। और हमारे अगले श्रोता हैं राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विवेक, प्रियांशी चौधरी वास से इनका संदेश हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे

फतेहाबाद हरियाणा से बसंत कुमार, दीपक कुमार, अशोक कुमार और योगेश कुमार का मैसेज हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें एक संदेश और मिला है। ये हमारे श्रोता हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। गांव चोली देशवाली, तहसील आदमपुर से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और राम निवास पांडु ने हमें संदेश भेजा है। इसी के साथ ही हमें संदेश भेजने वाले श्रोता हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के। ये हमें छत्रपति संभाजी नगर अंभई तहसील सिल्लोड औरंगाबाद महाराष्ट्र से संदेश भेज रहे हैं। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनेश शर्मा और राहुल शर्मा का संदेश हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर पूर्व और पश्चिम फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में।

साथियों, चलते चलते हमें ईमेल मिला है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, टोनी शाह, पुष्पिंदर पाल सिंह, सागर पैलेस, गोनियाना मंडी, बठिंडा, पंजाब से इन्होंने हमें ईमेल भेजा है। साथियों, इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपने साथी अनिल भल्ला को अनुमति। नमस्कार, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है radiohisar@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम एफएमएंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे थे। FM 102.3 MHz पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।